वाकई जी, हुण तुसी उठ जाओ और बस हुण तुहाडी वारी है, क्योंकि अगला कुछ जेकर असी हासिल करना, हुण तक तो जो सानू मिलना सी मिल गया, पर हुण जेकर असी कुछ हासिल करना तो मैं क्या कोशिश तो सानू आप ही करनी पैनी है ना। और जदों तक कोशिश नहीं करांगे, जदों तक हिम्मत नहीं करांगे, उदों तक मैं क्या कुछ नहीं मिलना। कई बार यही हो जाता है कि साढ़े हालात ऐसे हो जाते हैं, साडा टाइम ऐसा चल रहा होंगे कि असं चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, पर चलो कोई गल नहीं, टाइम के नाल नाल चलना पैंदा, टाइम के नाल नाल सिचुएशनस नू समझना पैंदा। पर जदों असं बिल्कुल ही हौसला छड़ दिंदे आ, जदों असं बिल्कुल ही अपने सुपने नू छड़ दिंदे आ ना, वह मैं साडी सब तो वड्डी बेवकूफी होंदी है। और उस टाइम दे विच कोई थोड़े उस सिचुएशन दे लई जिम्मेवार नहीं होंदा, सिर्फ तुसीं ही होंदे। बस ये है कि हिम्मत करन दी, मैं क्या थानू इस वेले हुण एक थोड़ी जी, मैं क्या थानू एक की कहिंदे आ उस चीज़ नू कि थानू थोड़ा जिहा इक चुटकी दी जरूरत है, थानू थोड़ा जिहा इक सूई मारन दी जरूरत है। भाई उठ जाओ, हुण हुण तुसीं करना, तुसीं ही करना है। क्योंकि देखो अज जेकर असं करा उ इतिहास के पन्न के कुछ खास होगा ना, हाँ तो समझ गए भाई। देखो अज 29 तरीक हो गई है, तुम देखो तुम्हें पता लग गया कि 5 महीने भी निकल गए है ना। असी सोचते असी नवे साल की उड़ीक करते रहने और किमें महीने महीने हफ्ते हफ्ते इदा इदा निकल जाते हैं, सूँ पता भी नहीं लगता। अज 29 तरीक हो गई है और ये डेट मैं क्या कि निकल गई है उस का भी सूँ नहीं पता लग्या। पर देखो असी तो इदा ही देखो समा बीत जाता है, उस समय के दौरान जोड़ा है असी बहुत कुछ खास कर भी जाते हैं। और की होया 29 मई की तरीक न इतिहास के दिनों मैं क्या वह भी थोड़ा मैं दस ही देनी हाँ। देश दुनिया के इतिहास के 29 मई की तरीक जी है बहुत खास मायने रखती है, क्योंकि इस दिन जोड़ा है इस तरीक न इतिहास के पन्नों के बहुत कुछ खास होया सीगा। माउंट एवरेस्ट जो कि कई सुपना रह जाता है, कई कोई सोचते हैं कि ऐसी इसनों उस चोटी के उत्ते पहुँचना है, कई जो पहला सुपना सीगा उस सुपने साकार कर दिखाया सीगा, दो लोगों के वलों एक कारनामा कर दिखाया सीगा। 29 मई 1953

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 102.7 MHz ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਆਰਜੀ ਐਂਡ

0: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: उन्होंने दूजे विश्व युद्ध तो बाद स्थापित आलमी संस्थावां विच सुधार का मुद्दा भी उठाया अते ग्लोबल साउथ विच देशां दी वधेरे नुमाइंदगी की मांग की। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AINU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ AINU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ BJP ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। BJP ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।
1: FM 102.7 MHz ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8:44 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੜਕਾਉਣ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੂ ਅੰਸ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਆਜੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार। टाइम हो रही है 10:19, प्रोग्राम चल रहा है थोड़े अपने फेवरेट चैनल 102.7 MHz FM रेनबो ते ते मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सरा। वेल हुणी तुसीं जिहड़ा गीत सुनिया सीगा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, है ना। वैसे इन्ने प्यार दे नाल जदों तुसीं कोई वाहन चला रहे हो ना, डॉग्स वाल ना देखिया करो। जे ज़्यादा ही प्यार वाल प्यार नाल उन्हां वाल देखोगे ना, फिर वह पै जाते हैं, फिर तुहानू अपना जिहड़ा वाहन है तेज़ चलाना पैंदा है।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात। एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल। नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़, डीडी भारती, डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर, एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला,

वेलकम बैक प्रोग्राम गीत पहाड़। तुसी इंजॉय कर रहे हो अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते ते मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सिरा। टाइम हो रहा जी 10:30 हो रहे ने ते ब्रेक ते जान तो पहला जरा तुसी गीत सुनिया पहला नशा। इसनों आवाज़ दिती सी उदित नारायण ते साधना सरगम ने। फिल्म का नाम सी जो जीता वही सिकंदर। गल्लां हो गईयां ना, हुण थोड़ी होर गंभीरता दे नाल एक वधिया जी गल दसदी तुहानूं। अज कल जे देखा जाए सिलेबस जिहड़ा बच्चों का ना स्कूल का बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है। मतलब बच्चों ने तो की असाइनमेंट्स बनानी है, पेरेंट्स का काम हुंदा हैगा बच्चों का होमवर्क पूरा करना, असाइनमेंट होवे, कोई एक्टिविटीज़ होन, कुछ भी काम करना या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बच्चों तो काम मिल जाता है पर करना पेरेंट्स नूं पैंदा है। तुहानूं पता है जापान एक इदां दी कंट्री हैगी है जिथे चौथी क्लास तक किसी भी बच्चे दे एग्जाम्स नहीं होंदे। वाह जी वाह, बड़ा सुकून मिले मैनू तो सुन के। आई नो जिहड़े पेरेंट्स सुन रहे होणगे उन्होंने भी अच्छा लगा होएगा। जापान दे विच चौथी क्लास तक दे जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी कोई एग्जाम्स नहीं होंदे। उन्हां दा मनना यह है कि बच्चों ते किसी भी तरीके का दबाव नहीं पाना चाहिए। उन्हां दे विच अच्छे गुण जिहड़े ने ना वो पता किस तरह आते हैं तुहानूं यह भी दस दिंदी है। जे उन्हां दे एग्जाम्स नहीं होंदे रोज़ स्कूल जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ां सीखते हैं। बच्चों नूं यह सिखाया जाता है कि अपनी क्लास नूं साफ किद्दां रखना हैगा। बच्चे सफाई भी करते हैं, सारे इकट्ठे हो के एक दूजे नाल खाना शेयर करते हैं। एंड ये जिहड़ियां चीज़ां जदों इकट्ठे मिल के बच्चे करते हैं ना, उन्हां दे विच एक डिसिपलिन आता, एक इक्वैलिटी आती है। उन्हां नूं पता हुंदा है कि असीं एक क्लास विच हैगे हां ते सारे बराबर हैगे हां। टीम स्पिरिट ये हुंदी है, सारे रल के काम करते हैं, कोई छोटा वड्डा नहीं। सो एक कह सकते हैं समाजिक जिम्मेवारी उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी की हुंदी है उन्होंने समझ आना शुरू हो जाता है। बच्चों ते जिन्ना दबाव साढ़े इत्थे हुंदा है ना एग्जाम्स का टेस्ट का, बच्चे का अति ग्रोथ उन्होंने उद्दी रह जाती हैगी है। बाकी चीज़ा की सीखनियाँ अल्टीमेटली पेरेंट्स नूं भी उन्होंने मगर पैना पैंदा, बेटे पढ़ ला, पेपर है कल टेस्ट है पढ़ ला। बट कभी असं यही नहीं सोचा बच्चे की जिहड़ी सोच है ना बहुत क्रिएटिव होंदी है। सो उन्हां नूं समां देना चाहिदा है। वैसे जे इत्थे वी इदां हो जावे ना कि एग्जाम्स दा प्रेशर ना बच्चों ते होवे, साडे बच्चे सारे ब्रिलियंट निकलूगे तुसी देख लियो। बट चलो हुण आपां इस गल ते तो कोई टिप्पणी दे नहीं सकते, पर मैं तुहानूं ये जरूर दस दिंदी कि जापान दे विच इदां हुंदा है कि चौथी क्लास तक बच्चों के एग्जाम्स नहीं होंगे। वाओ कि मज़ा आता, साड़ी बारी इदा क्यों नहीं सी कुछ। वैल कोई गल नहीं, सानू तो कुट पैंदी सी। वैसे मैं होर वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहती हैगी हाँ, पर मावा कई बारी अपने हथियार यूज़ करते सी। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग चप्पल जिहड़ी ठा देनी वजदी हुंदी सी ते फिर आई आई हुंदी सी ते फटाफट जा के पढ़ाई शुरू हुंदी सी ना। मैनूं पता तुहाडियां यादां ताज़ियां हो गईयां ना, सारे नूं याद आ गया होना कि भी मेरे भी पैंदी हुंदी सी। वैल चलो ज़्यादा नहीं सोचना हैगा, आपां इंजॉय करदे हां अगला गीत। अगला गीत कहड़ी फिल्म दा है, क्यों दसा वाए वाए, तुसीं भी तो दिमाग दियां गरारियां घुमाओ जी। ये कहड़ी फिल्म दा गीत है ते किहदी आवाज़ है?

एफएम न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है आर्टिफिशियल जनसंख्या तब्दीलियां ते केंद्र दी उच्च पदरी कमेटी इस मुद्दे नाल जिठन लई कानून दी जरूरत दा भी मुलांकन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का सद्दा दिता, कहा दहशतगर्दी खिलाफ लड़ाई विच दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब हरियाणा दिल्ली और त्रिपुरा लई नवे सूबाई पार्टी प्रधान नियुक्त किए। पंजाब विच 102 नगर निगमां लई वोटां दी गिनती अज हो रही है। 7,554 उम्मीदवारां दी किस्मत दा होवेगा फैसला। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा कतल केस विच ट्विशा दी सास अते सेवा मुक्त जिला ते सैशन जज गिरबाला सिंह नूं गिरफ्तार कीता है। एयर इंडिया ने पछमी एशिया विच चल रही भू राजनीतिक अनिश्चितावां दे विचकार इजराइल लई अपनियां उड़ानां जुलाई दे अखीर तक मुअत्तल कीतियां। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्मड फोर्सिज प्रपरेटरी इंस्टीट्यूट दे दो कैडेट्स नूं भारतीय जल सेना विच बतौर अफसर कमीशन मिलिया। मौसम विभाग वालों अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली दे कुछ हिस्सों विच गरज चमक नाल मीह पैण बारे रेड अलर्ट जारी। महिला क्रिकेट च भारत ने 3 2020 अंतरराष्ट्रीय मैचों की लड़ी के पहले मैच विच इंग्लैंड नूं 38 दौड़ां नाल हरा के 1-0 दी लीड हासिल कीती। आईपीएल क्रिकेट च अज दूजे क्वालीफायर मुकाबले विच राजस्थान रॉयल्स दा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ विखे शामी 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। इस एफएम न्यूज़ हेडलाइंस ते हुण पेश है प्रोग्राम पंजाबी तड़का। बस इस ब्रेक तो बाद

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का, तो हड़े अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते, ते मैं तुहाडी दोस्त सिद्धप्रीत सिरा। ते ब्रेक ते जान तो पहला जे दोस्त दा कॉल आया सी कुलदीप जी दा लुधियाना तो, उन्हां दी फरमाइश ते आ रहा जी इह गीत। जे तुसीं वी अपनी फरमाइश दा गीत सुनना है ते जी कहना कि यह बहुत ही आसान है, 0181 23 42174 यानी 01812342174 नंबर मिला के पहुँच जाना है प्रोग्राम च।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है आर्टिफिशियल जनसंख्या तब्दीलियां ते केंद्र दी उच्च पदरी कमेटी इस मुद्दे नाल निजिठण लई कानून दी जरूरत दा भी मुलांकन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी खिलाफ फैसला कून कार्रवाई का सद्दा दिता, कहा है दहशतगर्दी खिलाफ लड़ाई विच दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब हरियाणा दिल्ली ते त्रिपुरा लई नवे सूबाई पार्टी प्रधान नियुक्त किए। पंजाब विच 102 नगर निगमां लई वोटां दी गिनती अज हो रही है। 7,554 उम्मीदवारां दी किस्मत दा होवेगा फैसला। CBI ने ट्विशा शर्मा कतल केस विच ट्विशा दी सस अते सेवा मुक्त जिला ते सैशन जज गिरिबाला सिंह नूं गिरफ्तार किया है।

महसूस करता है, नेचुरली ठंडा महसूस करता हैगा। एसी तो चलो लगाना पैंदा कई बारी, पर नेचुरली ठंडा फील हुंदा है। सब तो पहला प्लांट हैगा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक तो हवा नूं प्यूरीफाई करता है, शुद्ध करता है, उहदे नाल ही नाल ये बहुत ही घट पानी की इनू लोड़ पैंदी हैगी, ज़्यादा पानी की भी लोड़ नहीं पैंदी हैगी। तो इनू कमरे का जिहड़ा टैंपरेचर हैगा ना, उसनू ये बैलेंस कर दिंदा हैगा। किस तरीके दे नाल भी उहदे विच तत्त है कि उहदे विच क्वालिटी हैगी, अपने अंदर भी इदां दी क्वालिटी रखनी चाहीदी है बंदे नूं कि बहुता ज़्यादा गुस्सा आया होवे ना थोड़े जे ठंडे हो जाना चाहीदा हैगा, क्योंकि गर्मी उद्दी ही बहुत है, इन्ना गुस्सा लै के जाना कित्थे हैगा। सो स्नेक प्लांट जिहड़ा हैगा असीं अपने लिविंग एरिया दे विच ईवन बैडरूम दे विच रख सकते हैगे। सो इहदे नाल की हैगा कि इहनूं पानी की ज़्यादा लोड़ नहीं पैंदी हैगी, तो ईजली तुसीं इहनूं अंदर रख सकते हो। वह गल वक्री है कि थोड़ा जिहा किते किते हफ्ते दे विच एक या दो वारी थोड़ी जी धुप लगवा देनी चाहीदी हैगी है प्लांट्स नूं। सो अगला है जेड प्लांट। ये भी हवा नूं प्योरीफाई करता हैगा, क्योंकि असीं नॉर्मल घरां दे विच देखिया हैगा एयर प्योरीफायर्स लाए हुंदे हैगे, इस करके कि जिहड़ी हवा हैगी उह प्योरीफाई हुंदी रहे ते अच्छी शुद्ध हवा सानूं मिले, क्योंकि बाहर दा पोल्यूशन ही इन्नी हैगी है कि साह लैना औखा हो जाता हैगा। प्रॉपर मास्क पाना पैंदा है, कवर करना पैंदा फेस नूं नक नूं, कि जिहड़ी पोल्यूशन है उह साडे अंदर ना जावे। अगला है जेड प्लांट। ये भी प्योरीफाई करता हैगा एंड ईवन जिहड़ा स्ट्रैस हैगा ना उहनूं घट करन दे विच मदद करता है, बिल्कुल करता है। प्लांट्स जिहड़ा नेचर है, एनवायरमेंट हैगी है ना, उहदे कोल बैठी हो कदी बहुत ही सुकून मिलता हैगा। ये घर दे विच जे तुहाडे छोटे बच्चे हैगे आ या फिर पैट्स रखे हुए आ तुसीं, उहनां दी पहुँच तो थोड़ा जिहा दूर रखना है, क्योंकि ये बहुत शरारती हुंदे ने, ये नहीं छड़दे कुछ भी। इन्हां नूं गुस्सा चढ़िया नहीं कि जाके इन्हां ने पत्ते तोड़ने शुरू कर देने हैगे आ, होर जिहड़े पैट हुंदे आ उहनां ने मिट्टी खोदनी शुरू कर देनी उहदी। सो इन्हां दा चीज़ां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो ये जेड प्लांट नूं बच्चियां दी ते पैट्स दी उहनां दे कोलों दूर रखना हैगा। होर भी कई प्लांट्स हैगे आ, मैं दसदी हाँ सबर करो, सबर भी बहुत जरूरी है, तुहानूं पता है पेशेंस जिहड़ी अजकल मुकदी जा रही है, पता क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैगी है, तो जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने ना वह फोनस ते इदां उंगलियां मारदे ने, इदां करके रीलां देखदे ने, ते हुंदा कि है ना पेशेंस लैवल घट जांदा है। वह किदां हुण जे बच्चा फ्री बैठा उहनूं हुंदा कि मैनूं कुछ दे दो, मैं टीवी देखना है या मैं फोन देखना है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार माँ जी वो भी मजबूर हो जाती है, प्यो मजबूर हो जाता है कि भाई बाबा बस कर, तंग ना कर, आ लै फड़ कार्टून देख ला। की करिए, करना की है, बच्चे के हाथ में थोड़े जे कलर्स फड़ा दिया करो तो वह सोहनी सोहनी ड्रॉइंग कर दोगे। ये भी हो सकता है कि जिहड़ियां तुहाडियां कंधां ऑलरेडी पेंटेड ने उन्हां ते सोहने सोहने डिजाइन भी बना दें, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, तो हाड़े अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते मैं तो

0: मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, तो हाड़े अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा गल कर रही सी। मैं प्लांट्स दी केड़े प्लांट्स तुसी घर दे अंदर रख सकते हो, ते अगला है जी पीस लिली। पीस लिली देखने भी तो सोहना होंदा हैगा, इन्ना प्यारा जिहा प्लांट हैगा, ये भी हवा नूं शुद्ध करता हैगा है, तो ठंडक जिहड़ी नमी बनाई रखता हैगा, तो ये ठंडक महसूस होंदी हैगी है। इन ड्रॉइंग रूम बेडरूम के रख सकते हो, इनू रोशनी वाली जगह पर जो रखोगे ना, जिदा हुण विंडो के कोल रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्लांट आता है जी स्पाइडर प्लांट। नाम देखो किन्ने अनोखे अनोखे ना, पर हैगे बहुत अच्छे है। ये जिहड़ा ऑक्सीजन लैवल हैगा ना, उहनू वधांदा हैगा तुहाडे घर के अंदर, एंड जिन्हें भी हानिकारक तत्व हैगे आ, इंप्योरिटीज़ हैगियां हवा के, उहनू काफ़ी हद तक जिहड़ा है वह खत्म करता हैगा, तो इनू भी रोशनी वाली जगह के नेड़े रखा जाए तो ज़्यादा वधिया रहेगा। ये कुछ प्लांट से जड़े जिदे बारे मैं तुहानू दस्या हैगा है, तो इस तो अलावा होर भी कई है। वैसे तो एक एलोवेरा जरूर रखना जरूरी हैगा, एलोवेरा उदा भी प्लांट बहुत अच्छा हैगा है, तुहाड़ी स्किन जिहड़ी है, तुहाड़ी हेयर है, हर एक चीज़ लई तुहाड़ा एलोवेरा जो है ना वह बेस्ट है। सो वो प्लांट रखना लाजमी हैगा, वह तो मैं लगता कि सारे के घर डेफिनेटली यह होएगा, क्योंकि स्किन केयर हेयर केयर हर एक तरीके की प्रोवाइड यह एलोवेरा करता है। हुण होर केड़े बारे गल की जाए, अज दसो दसा मैं ही दस दिनी तुहानू होर केड़ी गल करनी चाहिए हैगी है, कि जो असी सोहना जे तैयार होंने बाहर घूमन जाना होंदा है, या तुसी दो पहिया वाहन ते आ आप चला रहे हो, या फिर बाइक ते बैठे हो, या पिछे कोई मतलब अगे कोई होर चला रहा है तो तुसी पिछे बैठे हो, कुछ गल्लां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो जिहड़ी वारदातां हुंदियां उह करनियां ही लोकां ने, लोग सुधर नहीं सकते, किन्ना कु तुसी सुधार लोगे उन्हां नूं, है ना। सो फिर अल्टीमेटली की हैगा कि अपना ध्यान आप रखना पैंदा हैगा। सो ड्राइविंग करदे टाइम खास करके टू व्हीलर, कोई भी तुसी ज्वेलरी जो तुहानूं लगदा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैगी उह नहीं पानी चाहीदी हैगी आ। हैंडबैग या पर्स जिहड़ा हैगा अपना, उह जिहड़ा डिग्गी हुंदी है अपने टू व्हीलर दी, उहदे विच रखो। एंड मैं कईयां नूं देखिया हैगा, कई लोग ना फोन ते गल करदे करदे जांदे आ, उह इह तां तुसीं इनविटेशन दे रहे हो, फोन ते गल करदे करदे जाओगे पिछों किसी ने आ के तुहाडा फोन ही खो के लै जाणा, फिर लभदे रहांगे ओहो कित्थे गया फोन। सो इदां दीआं चीज़ां या इदां दी बेवकूफ़ी आप भी नहीं करनी हैगी आ, फोन ना ही यूज़ किया जाए तो बैटर हैगा। एंड एक चीज़ मैं होर देखी है, जो तुसीं टू व्हीलर चला रहे हो, कई लोगों ने ना पर्स मोढ़े तो टंगिया होंदा, या बच्चे का स्कूल बैग मोढ़े तो टंगिया होंदा, एक पासे नूं मोढ़ा जा रहा होंदा, पुष्पा बनिया होंदा बंदा, मैं झुकेगा नहीं साला, सॉरी माफ़ी चाहनी है, मैं डायलॉग बोल रही थी, वो डायलॉग इस तरह हैगा। सो वो हुंदा की है कि जो तुसीं इदां वहीकल ते कोई चीज़ पा के जा रहे हो ना, वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जे तुहाडे कोलों कोई होर कार लंघ रही है या फिर कोई ट्रक लंघ रहा है, किसी भी टाइम वो किसी हुक दे विच फस सकता है, जिहदे नाल कि तुहानू नुकसान हो सकता है। सो इदां दी गलती नहीं करनी हैगी, तुहाडे कोई बैग है पर्स है कुछ भी है, उहनू अपना जिहड़ा वाहन है अगे रख लो या डिग्गी दे विच रख लो, इदां दी चीज़ ना करो जो तुहाडे लई मुश्किल हो जाए। सो ये कुछ निक्की निक्की गल्लां दा जिहड़ा ध्यान रखना पैंदा है ऑन रोड जदों तुसीं जा रहे हुंदे हो। सो होर की करना चाहिए बई, हूँ तो मैं प्ले ही करन लगी हूँ सोंग, तुसी सुनो सुनो जहाँ गीत आ रहा सतिंदर सरताज की आवाज़ दे विच, ते उस तो बाद गल्लां बहुत ने मेरे को करन नूं, हले तुसी पेन एंड कॉपी तैयार ही रखो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते

जी दोस्तों, इन्ना सोहना गाना, मज़ा ही आ गया दिलजीत की आवाज़ में सुनिया गाना। चलो हुण फटाफट लिख लीए पहाड़ी रायता बनाना किदां हैगा। पहाड़ी मसाला जिहड़ा रेडी करना उहदे लई नोट कर लो, लहसुन चाहिए, चार कलियां चाहिए लहसुन दियां, हरी मिर्च दो तो तीन लै सकते हो, बाकी तुहाडे स्वाद अनुसार हैगा, अदरक, ताज़ा हरा धनिया, ताज़ा पुदीना 8 to 10 पत्तियां, धनिया भी एक कप, तुसीं हाफ कप लै लो तो ज़्यादा बैटर रहेगा। उस तो बाद चाहिए तुहानूं राई, जीरा, ये सारिया चीज़ा तुसीं लै लैणियां, तो इनू अच्छी तरह कुट कुट के इहदी चटनी बना देनी है। बिल्कुल, ये जो मसाला रेडी हो जाएगा अच्छी तरीके दे नाल इनू पीसना हैगा। सो ये एक पहाड़ी मसाला जिहड़ा रेडी हो गया, इनू एक साइड ते रख देना। दोबारा दस दिनी है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, राई ते एक जीरा, ये सारिया चीज़ों नू अच्छी तरह ग्राइंड कर लो। वैसे तुसीं ब्लैंडर च कर सकते हो, जो सिलबट्टा हैगा जो उत्ते पंगे लैने तो लै सकते हो तुसीं, इदां दी कोई गल नहीं है। होर बाकी चीज़ां की चाहीदियां, उहदे लई चाहीदा है दही, दही तो चाहिए ही है, फिर रायता बन रहा हैगा, दही, खीरा, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर ते ताज़ा हरा धनिया, ये तो जरूरी है, तो हर एक डिश विच पैंदा ही हैगा। होर तड़का लगाउण दे लई तुहानूं चाहीदा सरों दा तेल ते नाल लाल मिर्च। ईजी है ना, हुण कुछ नहीं करना, पहलां तां जिहड़ी तुसीं पेस्ट बनाई उहनूं एक साइड ते रख लो। हुण एक वड्डा बाउल लै लो, होर जिहड़ा खीरा है खीरे नूं अच्छी तरह कद्दूकस करके उहदे विच्चों पाणी निचोड़ लैणा हैगा। दैन एक बाउल दे विच दही, खीरा, होर जिहड़ा मसाला असीं रेडी कीता सी कुट कुट के ओह वाला मसाला इहदे विच पाउणा है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, हरा धनिया, ये सारियां नूं मिक्स कर दो अच्छे तरीके दे नाल। जदों मिक्स हो जाए, गर्म करना है सरों दा तेल थोड़ा जिहा, सिर्फ तड़का ही लगाना है, एक चम्मच काफ़ी हैगा, ते उहदे विच लाल मिर्च पानी है, ज़्यादा तो नहीं भुन्ना हैगा उहनूं, लाल मिर्च का स्वाद खराब हो जाना, फटाफट मिर्च उहदे विच पा के, मिर्च पाउडर।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज, तो हरे अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो ते ते नाली नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर ते। मैं तुहाडी दोस्त इंद्रप्रीत सिरा। ब्रेक ते जाण तो पहला जिहड़ा तुसी गीत सुनिया उसनू आवाज दित्ती सी ऊषा उथप ते बप्पी लहरी ने। फिल्म का नाम सी डिस्को डांसर। वक्त ने दिखा दी हकीकत, वक्त ने दिखा दी हकीकत, कौन अपना कौन पराया है। धोखे की धूल ने चेहरों से, धोखे की धूल ने चेहरों से हर सच्चा नकाब हटाया है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: दिल आज शायर है।
1: आए देखो जी क्या फील है ना,
0: दोपहर का वेला है जो बंदे की सोच जिहड़ी है ना वो अपने बारे सोचण ते मजबूर हो जाती है ना, अपने महबूब बारे, अपने ख्वाबा बारे, अपने दिल के इजहारा बारे। और लो जी आरजे जोरावर सिंह इज हेयर, ते शुरू करते हैं फिर। दिल आज शायर है एक ऐसी महफिल जिथे एहसास बोलते हैं, ते खामोशियां भी गीत बन जांदियां ने। रातां दी चुप विच जदों यादां गल्लां करदियां ने, दिल दियां सुनियां रावां भी रोशन हो जांदियां ने। कुछ नाम हुंदे ने जो कदे भुल्ले नहीं जा सकदे, ते कुछ रिश्ते सिर्फ एहसासां नाल निभ जांदे ने। दोस्तों अज ये शो दिलां दे नाम जो कदे किसे लई धड़कदे सी, उन्हां अखां दे नाम जिन्हां ने ख्वाब तो बड़े वेखे पर हर ख्वाब पूरा ना हो सकिया, पर कुछ ख्वाब पूरे भी हो गए, मतलब मिलदा जुलदा काम। कई बार हसदे चेहरे भी दर्द लुकाउंदे ने, ते कई अपने दिल दी गल किसे नूं ना सुणाउंदे ने, पर जदों शब्द शायरी बन जांदे ने तां लुके हुए जज्बात भी मुस्कुराउंदे ने। अज दी इस महफिल विच होणगियां दिल दियां गल्लां, मुहब्बत दा जिक्र, यादां दी खुशबू, ते ओ सुर जो सिद्धे रूह तक उतर जाण। दिल नूं दिल नाल जोड़ना आसान नहीं हुंदा, हर कोई सच्चा महबूब नहीं हुंदा। जिस उत्ते रब दी रहमत हो जावे उहदा प्यार कदे अधूरा नहीं हुंदा। तो दोस्तो वैसे दोस्त दा मतलब हुंदा दोस्त सत, मैं हर बार यही चीज़ कहना दोस्त सत। देखो जी एक पासे तो मैं हाँ, एक पासे तुसी सारे। देखो आप रल मिल के इन्नियां पॉजिटिव गल्लां करनियां ने कि एक अद्धी जिहड़ी वी साडे अंदर नैगेटिविटी है ना वो सारी दूर हो जाए, है ना। तो सियाणे कहिंदे ने करोंगे गल तां मिलेगा हल, ते अपनियां यादां नूं कोल बिठा लो, चाह दा इक प्याला। वैसे जिहड़े जिहड़े चाह पींदे आ, असीं तां पंजाबी लोक ना वैसे गर्मियां दे विच चाह वी पी लैंदे हुंदे आ, ते जे किसे ने नींबू पानी पीना क्योंकि बाहर लू वी चल रही है, तो लो जी अपनी यादां नूं कोल बिठा लो, तो नींबू पानी या जिन्हें चाह पीनी चाह पी लो, चाह हाथ फड़ लो, तो खो जाओ इस हसीन सफर विच, क्योंकि अगले कुछ पल होणगे शायरी दे नाम, मुहब्बत दे नाम, ते तुहाडे अपने दिल दे नाम। तुसी सुन रहे हो 102.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी जलंधर का यह रेनबो चैनल है, तो आरजे जोरावर सिंह तुहाडे नाल है। तो तुसी सानू ना बहुत सारे अपने व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, और मैसेज विच तुसी भेजना की है एक खास है, मैसेज विच तुसी शायरियां गज़लां भी भेज सकते हो। वैसे कोशिश करो कि शायरी जिहड़ी अपनी लिखी होवे ना ते ओह तुसी जरूर सानू भेजो। ते अज दा जिहड़ा टॉपिक है ना आपां रखांगे बेफिक्री दे उत्ते, बेफिक्र है ना, बेफिक्री किन्नी जरूरी है साडे वास्ते। सो बेफिक्री दे उत्ते जेकर कोई शायरी आप लिख सकदा है ते बहुत ही वधिया गल है, ते जेकर किसे दी लिखी हुई भेजनी आ ते उहनां व्यक्तियों का नाम जरूर थले जिक्र करना, ठीक है जी। तो एक चीज़ का होर ख्याल रखना कि जिहड़ी आप टाइपिंग कर रहे हैं उन्हें आप री रीड कर लेना, ताकि कुछ टाइपिंग दे विच गड़बड़ी रह ना जाए, पढ़न दे विच आसानी होवे और समझन दे विच भी आसानी होवे। तो लाओ जी खूबसूरत सफ़र असी शुरू करते हैं। एक बने मैं हाँ जी, यानी कि आरजे जोरावर सिंह, तो दूसरे बने तुसी लखां ही करोड़ां ही स्रोते, क्योंकि ये फ्रीकुएंसी 102.7 मेगाहर्ट्स की पूरे भारत वर्ष नहीं, इतों तक कि आले दे नाल दे लगदे देशों दे विच भी जाती है। तो लो जी तुसी इन्ने प्यार दे नाल सुन ही रहे हो, तो फिर एक होर प्यारा जा गीत, वैसे तो मैं कहूँगा गज़ल, क्योंकि गज़ल गीत एक ही चीज़ है। सो आओ सुनते हैं आप रल मिल के, तो इस खूबसूरत शो का आगाज़ करते हैं। तो मैंने तुहाड़े मैसेजिज का इंतजार रहेगा, तो नाल दे नाल असी तुहाड़े मैसेजिज भी जरूर पढ़ांगे, ठीक है जी। फिर देर किस गल दी, मैसेज फटाफट भेजो, मैं तुहाड़े नाल ही हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा जी मैं तुहानूं।

नाराज बैठा है। कभी जो ख्वाब तेरे संग सजाए थे हमने, आज वही ख्वाब टूटकर बिखर गए हैं। तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है, हम तो बस नाम के ही अब जिंदा रह गए हैं। दिल की हर धड़कन में बस तेरा ही नाम है, पर तुझे अब मेरी चाहत से क्या काम है। हमने तो हर दर्द हंसकर सह लिया, पर तूने कभी समझा ही नहीं ये जज्बात है। क्या बात है। मैं ना दूरदर्शन गया ते उत्थे ना सामने एक बोर्ड दे उत्ते एक बड़ियां खूबसूरत लाइनां लिखियां, कहंदे जिंदगी में रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। जिंदगी में रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन जनाब निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। लेकिन जनाब निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। सियाने कहंदे हुंदे ने कि सियाने बंदे नूं इशारा ही काफ़ी। सो जे रिश्ते सांभणे ने ना ते भाई बंदे नूं झुकना ही पैंदा, झुक के एक्सेप्टेंस करके और सबर करके और उडीक करके, ये सारियां प्रेम दियां निशानियां ने। सबर, एक्सेप्टेंस, उडीक, चुकाव, त्याग, उस तो बाद क्या ही बात है, क्या ही चीज़ां प्रगट होंदियां। जदों तुसी किसे वक्त मेडिटेशन ते भी बैठोगे फिर तुहाडा ध्यान जड़ा आ इस कायनात दे कण कण दे विच समा जाएगा और क्या ही वो माहौल बनता है। और रियल मुहब्बत जिहड़ी है वो कमाल दी हुंदी है। फिर तुसी एक चुंबक की तरह बन जाओगे, फिर जिहड़ा महबूब तुहाडे तों नाराज होया ना वो भज्जिया ही आऊगा फिर तुसी कहना वो भरा गलो लै मजाक दीआं गल्लां। सो बड़ा खूबसूरत इन्हां ने एक ना बड़े सोहणे लफ्ज़ां दे विच लिख के भेजिया, इन्हां ने राइटिंग बड़ी खूबसूरत लगती मैनूं ए आई पई है पर बहुत सोहणा लिखिया। सो लो जी अगला मैसेज असीं पढ़दे हां। ओके, किसी जनाब ने सानू वॉइस मैसेज भी भेजा, नहीं वॉइस मैसेज नहीं जी, लिख के भेजो सानू कुछ ना कुछ। ओके, ये भेजा जी सानू, कहंदे ने गुड आफ्टरनून सर, कुलविंदर टेलर, पिंड कंडोला नियर आदमपुर। लो जी आदमपुर तो आ गया सानू स्नेहा। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर ले मुझसे कोई बहाने से, हो सके तो बात कर ले मुझसे कोई बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर इतना तो देख, कोई टूट रहा है तेरे रूठ जाने से। हाय ओए, किसी नूं तोड़ना नहीं चाहिए, वाकई गल सही है। देखो जी कहंदे हुंदे ने दुनिया का सब तो वड्डा पाप ना तोड़ना आ, तो दुनिया का सब तो वड्डा पुन्न है जोड़ना। बड़ी वधिया इन्हां ने ये लाइनां जिहड़ियां सत्रां जिहड़ियां लिख के सानू भेजियां ने, कुलविंदर टेलर साहब। इन्हां ने अगे भी मैनूं लगदा सानू तस्वीर भेजी सी थोड़े दिन पहलां। अच्छा नहीं, वो होर जनाब सीगे, वो भी शायद आदमपुर तो सीगे। तो लो जी अगला मैसेज सानू भेजिया जी। ये लिखते ने भाजी एक होर शायरी पेश है जी। हंकार दस दिंदा है किन्ना पैसा है, संस्कार दस दिंदे हन परिवार किवें दा है, बोली दस दिंदी है इंसान किवें दा है, बहस दस दिंदी है ज्ञान किवें दा है। ओए होए हो, क्या बात है, ये तो मैं भी खिंच के जाऊँगा दी फोटो, बहुत सोहना बहुत सोहना। ओके जी अगला मैसेज आया जी सानू। हम सब के पास सीमित वक्त है, बिल्कुल जी, इसे किसी और के नज़रिए से जीने में बर्बाद मत कीजिए। ओए होए होए होए, क्या बात है, इनू कहां कि सिक्सर, क्या बात है, आंदे सिक्सर लाता कि मान संगरूर तो दो लैणा जी सब कुछ दसता। हम सबके पास सीमित वक्त है, इसे किसी और के नज़रिए से जीने में बर्बाद मत करे। ओए होए होए, क्या बात है यार, वाकई ये ना वैसे तुम बहुत सोहनिया सोहनिया जिहड़ियां सानू सत्रां लिख के भेज दिओ ना, तो ये मैं सारियां नोट डाउन कर लैनियां, तो क्योंकि देखो जी जितों ज्ञान मिले ना उतों ले लेना चाहिए, सोहनी चीज़ हुंदी आ, वधिया गल हुंदी आ। सो लो जी फिर अगली भी गलबात आपां करदे आं तुहाडे नाल।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है ते आप जी जोरावर सिंह दे नाल तुसी बैठे हो ते शो चल रहा है जी। मैं कहा जी गज़लां दे नाल भरपूर, प्यार दे नाल भरपूर, मुहब्बत दे नाल भरपूर दिलाज शायर है। तुसी इंजॉय कर रहे हो अपना शो।

और वक्त इजाजत नहीं दे रहा, जाना पएगा, बट कोई गल नहीं, आपां तुहाडे नाल ही हैं, ठीक है जी, टेंशन वाली कोई गल नहीं। तुसीं अपनियां लिखतां इस तरीके नाल बरकरार रखो, पर जांदे जांदे भी मैं चाहवांगा कि मैं तुहाडे मैसेज पढ़ ही देवां, है ना जी। पढ़ दिए दो तीन मैसेज, कोई चक्कर वाली गल नहीं, लो जी पढ़ दिंदे आ। ये भेजते ने जी उदय, उदय जी खाकसार उदय चंद्र जी लिखते ने, कहते ने कि तजुर्बों ने यही सिखाया है, पेड़ अपना है, फल पराया है, उसने बस ठोकरें हटाई हैं, पत्थरों को कहाँ हटाया है, आज वो फायदे में है जिसने वक्त से फायदा उठाया है, कोई आंसू ही उसे हंसाएगा, कह कहो ने जिसे रुलाया है। हाय हाय हाय हाय, ये लिखते ने खाकसार उदय चंद्र जी। तो उदय चंद्र जी ने सानू मैसेज भेजा है, तो ये नाल नाल असी फिर दूसरे किसी साडे साथी का भी मैसेज पढ़ ही दईए, है ना, क्योंकि समा वैसे ना बड़ा भज रहा तेजी दे नाल, ते मैसेज पढ़ दें लो जी मुहब्बत का, है ना। लिखते ने मुहब्बत रूह की वह खुशबू है जो दूर रह के भी महसूस होंदी है, तो जो कि मुहब्बत सानू तुहाडे नाल है, सो यही मुहब्बत इस तरीके नाल बरकरार रहे। हुण तो कुछ चिर बाद दोस्तों तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो हैलो डॉक्टर प्रोग्राम तुसी सुनोगे, जिदे विच हैल्थ दे रिगार्डिंग बहुत ही सारियां गल्लां बातां तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सीखोगे ते उन्हां नूं अपनाओगे। रेडियो डॉक्टर तुहाडे दरम्यान हाजिर है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: जब सूरज तपता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में घटती ऊर्जा, गर्मियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं, थकान और पाचन संबंधी परेशानियां, लेकिन आयुर्वेद में हर मौसम के अनुसार स्वस्थ रहने के प्रभावी उपाय बताए गए हैं। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस, यानी गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह दबास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
3: थैंक यू मैडम।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्मियों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं?
3: मैडम, ऐसा है कि गर्मी का जो मौसम है इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं और जो शरीर पर पड़ती हैं तो पानी को सोख लेती हैं, तो शरीर में पानी जब कम होगा तो खुश्की आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और साथ में लू लगना, जैसे सनस्ट्रोक बोलते हैं, या उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां ऐसी आ जाती हैं। आदमी को खसरा वगैरह इस मौसम में ज़्यादा निकलता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कफ है शरीर का कम हो जाता है, जो शरीर की ताकत है वो घट जाती है, शरीर दौरबल हो जाता है और जो वात है वो बढ़ता है, तो वात फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, तो परेशानियाँ ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए गर्मी में हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे बचने के लिए, तो उसकी प्रिकॉशन जैसे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप गर्मी में अगर बाहर जा रहे हैं तो घर पानी पी के जाएँ पहले, तो उसके बाद सिर पे कोई कपड़ा रखें और छाते का प्रयोग करें। छाता लोग आमतौर पर जो छाते मिलते हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक जो है वो कलर जो है हीट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसके लिए

0: बेस्ट है कि आप व्हाइट कलर का छाता हो, जो व्हाइट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। इसलिए जो कपड़े हमारे पहनने के वाले हैं वो भी लाइट कलर के हों या व्हाइट हों, वो डार्क कलर के ना हों, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कम से कम गर्मियों में 2 बार स्नान भी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। और खाने में आजकल जो सीजन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, नींबू है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े समोसे, इस तरह की जो चीज़ें, बाज़ार का जो खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार का खाने में आजकल आपको पता ही है जो तेल यूज़ हो रहा है वो बहुत घटिया किस्म का तेल यूज़ हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप को बचाएंगे तभी बच पाएंगे। इसमें हर इंसान की अपनी स्वयं की जिम्मेवारी है। अब गर्मी तो यूं भी बढ़ रही है, और ये गर्मी जो है, जैसे आजकल देख रहे हैं आप, सब कारों में एसी है, बसों में एसी है, ट्रेन एसी चल रही हैं, तो हीट तो बाहर आ रही है ना, हीट आ रही है। तो आम आदमी जिसके पास कार नहीं है, यानी स्कूटर पर है या थ्री व्हीलर में है या पैदल है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसको जाना तो उसी रोड पे है, रास्ते से, और वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की, पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को, ये तो वो लोग बता सकते हैं, पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है वो गाँव से है, और हम ये समझते हैं कि कितनी दिक्कतें आती हैं, ये हम ही लोग जान सकते हैं, शहर के आदमी शायद इस बात को ना समझें।
1: गर्मियों में समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखें, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जैसे कि रेडियो डॉक्टर में सर हम आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियां बहुत हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार?
1: देखिए गर्मी में संतुलन बनाने के लिए देखिए बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री, और जब बाहर हम जाते हैं आजकल देख रहे

0: 46 डिग्री से भी ऊपर चला गया, सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। तो इतनी ज्यादा गर्मी में अगर आप बाहर जाएंगे और बाहर कोई एक्सरसाइज करेंगे या दौड़ लगाएंगे या कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए इस ऐसी गर्मी में हल्का व्यायाम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा। बाद में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो आपको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और दूसरी कई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए खाने पानी भी बार बार पीते रहिए आप, ये जरूरी है। बीच बीच में पानी पीजिए, नींबू का पानी डालकर नींबू पी सकते हैं आप दही की छाछ बना के शिकंजी बना कर पी सकते हैं। ये चीज़ें लीजिए आप, ठंडी चीज़ें, संतरा ले सकते हैं आप, संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। जो इस सीजन में जो चीज़ें पैदा होती हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उस वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ये खरबूजा है, तरबूज है, ये चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, ये सब गर्मी को कम करने के लिए है, तो आप इनका सेवन करिए आप। और कोई भी तली भुनी चीज़ें, पकौड़े समोसे या पराठे वराठे मत खाइए आप, ठीक है। मसाले, गर्म मसाले वगैरह सेवन मत करिए आप, तो ये प्रिकॉशन रखिए आप।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: शांति।
1: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताइए आपके क्या प्रश्न है।
2: हाँ, मेरा कहना है कि जैसे कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और जाहिर है कि आजकल ग्रीष्म ऋतु है, हमारे आयुर्वेद में भी एक कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या।
0: बिल्कुल।
2: तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
0: देखिए ऐसा है, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी मिड मई से मिड जुलाई के बीच का है, इस टाइम जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और जल को सोखती हैं बॉडी के, उस बॉडी बॉडी नहीं जमीन पे भी जल होगा उसको भी सोख लेती हैं, तो आपको देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। अब जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, खाना पीना ठंडा खाना चाहिए, कोई भी गरम मसाले मिर्चें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप जो सीजन की चीज़ें हैं, जैसे आपका मैंने बताया था आपको अभी तरबूज पैदा हो रहा है वो खाइए आप, खरबूजा खाइए आप, नींबू का पानी पीजिए आप, दही की छाछ पीजिए आप, स्किंजी बना के पीजिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। खस का जो है उसका शरबत पी सकते हैं आप, है ना, संतरे का जूस पी सकते हैं आप, अनार का जूस पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप, तो इससे जो है आपको बॉडी आपकी ठीक रहेगी, संतुलन बना रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जरूरी है कि आप बाहर धूप में ना जाएं, अवॉइड करें, जाना बहुत ज़रूरी हो तो पानी पी के जाएं, साथ में सिर पर कोई कपड़ा कवर ढकें उसको, छाते का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो दिन का टाइम है करीब 11 से लेकर 4 बजे तक का, इसमें तो बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें, और ख़ासतौर से बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 केजी के आसपास मेरा वजन है, वो पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और व्हाइट मेरी स्किन है। तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून
1: जी।
3: डॉक्टर साहब मेरे
1: हाइट कितनी है आपकी? डॉक्टर साहब
3: हाइट मेरी 6 फीट।
0: 6 फीट है, चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से वेट तो ठीक है आपका, कोई ज्यादा कम तो नहीं है।
3: डॉक्टर साहब मेरे 4 सवाल हैं, बड़े सीधे सादे भोले भाले।
0: हाँ बताइए।
3: पहला सवाल तो ये, डॉक्टर साहब चूंकि मेरी व्हाइट स्किन है तो लिहाजा मुझे गर्मी सूट वैसी नहीं करती।
0: हाँ बिल्कुल।
3: चूंकि मेरी पित्त प्रवृत्ति है
0: जी हाँ,
3: तो डॉक्टर साहब हो ये रहा है कि मेरे को लीवर के आसपास काफी ना इन दिनों गर्मी जलन गैस बहुत बन रही है लीवर के आसपास।
0: हाँ जी हाँ।
3: तो मेरी जो डाइट वो 4 फुलके होती थी,
0: हाँ जी,
3: एक दो फुलके ही खा पा रहा हूँ।
0: हाँ जी।
3: तो इसके लिए मैं क्या करूँ? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे श्वसन एलर्जी भी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? घरेलू स्तर पर अगर आपके पास आते तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा सवाल, तो मुझे निद्रा की भी प्रॉब्लम है, तो मैं गर्मी मुझे और भी सूट नहीं कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और चौथा आखिरी सवाल कि मुझे लीवर ये थायराइड या टॉन्सिल में से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे को बोलने प्रॉब्लम मतलब गले में ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस। और एक छोटा सा सवाल और था कि गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आंखों में गर्मी जलन होती है, सीधी सी धूप पड़ती है, आंखों पर गर्म हवाएं चलती हैं। ये 5 सवाल है, प्लीज गाइड करें, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी।
0: ठीक है, देखिए ऐसा है, स्किन आपकी वाइट है, ठीक है, और आपको जो गर्मी है वो शूट नहीं करती, तो ये जो है इसके लिए तो वही है कि गर्मी है ज़्यादा, मौसम सीजन भी गर्म का है, आपकी बॉडी में वैसे ही गर्मी है, तो नेचुरल खाने पीने का अपना पत्थे का प्रयोग सही करें आप, और पत्थे का सेवन ना करें आप, दूसरा लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें, गर्मी में बाहर ना जाएं, अंदर रहें।

0: ठंडे स्थान पर जाएं, अगर आपके पास अच्छी हो तो आप किसी भी ठंडे एरिया में शिफ्ट कर जाएं गर्मी के टाइम पे। तो सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। लीवर है आपका, भूख जैसे कम लग रही है तो भूख के लिए आप नमक और जो है आपका थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ा सा अजवाइन डालें, थोड़ा अदरक डालें, उसको नींबू में भिगो कर रखें, उसको खाएं तो आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लीवर के लिए आपको जो है लीवर के लिए कई दवाइयाँ भी आती हैं। वैसे तो चिरायता वगैरह अच्छा लीवर में काम करता है, आप ले सकते हो, उसको लें आप, ठीक है ना। और पानी बार बार पीते रहें, अब ये बहुत ज़रूरी है। नींबू आपको शूट करता है, नींबू की शिकंजी लें, छाछ दही की छाछ बन दही की जो है लस्सी बना कर लें आप। संतरा शूट करता है, संतरे का जूस पी लें, अनार का जूस पी सकते हैं आप। ये चीज़ें लीजिए आप सारी। थायराइड के लिए जो है शीतली प्राणायाम करेंगे आपको गले के रोगों में फायदा करेगा। शीतली प्राणायाम करें, उससे भी आपको आपकी ठंडक रहेगी, गर्मी कम हो लगेगी आपको।
1: और उन्होंने कहा था कि उनको एलर्जी हो जाती है।
0: देखिए एलर्जी किस चीज़ से होती है ये तो आपको देखना पड़ेगा, अभी क्या खाने से एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करना पड़ेगा।
1: अच्छा, और एक उन्होंने कहा था कि उनको निंद्रा की भी प्रॉब्लम है, कि जैसे गर्मी बहुत है उनको नींद नहीं आ रही है कुछ।
0: देखिए अपना अगर आप कैपेबल है तो एसी लगाइए अपना, और थोड़ा खाना खाने के बाद में आप आधा घंटा घूमिए, थकावट होगी तो नींद भी आ जाएगी।
1: और साथ में कह रहे थे कि उनको ड्राइनेस बहुत फील होती है, चाहे गले में भी आँखों में भी, गर्मी तो है।
0: तो गर्मी में जो ड्राइनेस होती है आप उसके लिए
1: क्या करें?
0: गाय का प्योर घी, जो बाजार में गाय का घी मिलता है वो प्योर नहीं है, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पर आप अपना गाय का प्योर दूध लो, घी निकालो, उसको एक चम्मच सुबह शाम ले लो आप, तो गर्मी कम कर देगा गाय का घी, वो सबसे अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, मेरा नाम योगेश है और मैं देहरादून से हूँ। गर्मियों में भूख को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है कि भूख कम लगती है, क्या करें?
0: देखिए वही है, क्योंकि गर्मी में लीवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लीवर गर्मी के अंदर, और लीवर का काम है सारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो वहाँ जो है आपका अपने एक बार तो टेस्ट वेस्ट कराओ भाई, आपका लीवर फैटी तो नहीं है, और खाना क्या खाते हैं आप इसके भी डिपेंड करता है, वेजिटेरियन है या नॉन वेज हैं, और क्या काम करते हैं आपका, काम का टाइमिंग क्या है, जो वर्क कैसा है आपका, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। फिर आपकी सोच कैसी है, तो एक तो अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी। दूसरा आपका पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए, पेट साफ होगा तो आपको भूख भी लगेगी, और उसके लिए आपको सुबह उठकर कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए खाली पेट, ठीक है। जब पानी पियेंगे तो आपका दीर्घ शंका होगी, पेट साफ हो जाएगा तो भूख भी लगेगी। आम मैं देखता हूँ कि आमतौर पर 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ज़्यादा होता है वो परेशान रहता है, कम वाले को पता नहीं चलता कॉन्स्टिपेशन है। पर जिसका भी पेट छाती से ऊपर जा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, समझो उसको कॉन्स्टिपेशन है। केवल प्रेगनेंसी में पेट ऊपर जाना चाहिए लेडीज़ का, उसके बाद तो जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो, और उसे आप एडवाइस लो, और उस तरीके से अपना खाना पीना ठीक करो, ये सबसे बेस्ट है। तो अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, फूड हैबिट्स चेंज करो अपनी, और पथ्य का आहार करो गर्मियों में विशेष तौर से, आप पथ्य को छोड़ दो।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि गर्मी में पाचन खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ उपाय है?
0: हाँ है, क्यों नहीं, आप जैसे आयुर्वेदिक में आप चिरायते का सेवन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लीवर के लिए काम करता है। बाकी दवाइयाँ तो बहुत कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही हैं लीवर के लिए, बहुत दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं, वो ले सकते हैं। बाकी भूख कम लग रही है तो सिंपल सा लौंग भास्कर चूर्ण है, आपके हजमा का भूख को लगाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका अदरक है घर में, आपके नींबू है और उसमें अजवाइन डालो, और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो अदरक के, और डिबो दो उसको, उसको सेवन करो, एक दिन डुबा रहने दो, उसको सेवन करोगे तो आपकी भूख खुल जाएगी उससे।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, यह लिखते हैं, डॉक्टर बलजीत दबास और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गर्मियों में आयुर्वेद में बच्चे जवान और बुजुर्गों की डाइट कैसे अलग होगी, और ये फास्ट फूड का चलन हो गया है वो कितना हानिकारक है, और सुबह और शाम क्या करना चाहिए? थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिखते हैं।
0: चौहान जी, बात यह है कि जो फास्ट फूड है ना, ये तो समझ लीजिए बीमार करने का एक मीडिया आ गया है हमारे बीच में, कि लोगों को बीमार करेगा और पैसा कमाएगा। अब इसमें एक भी चीज़ अच्छी नहीं है फास्ट फूड में, क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं, सबको बना बना खाना चाहिए, ना आदमी काम करना चाहता है ना महिलाएं काम करना चाहती, खाना कौन बनाए? तो सबसे आसान है कि फ़ोन करो, किसी टाइम भी खाना मंगा लो, रात के 12 बजे मंगाओ, 2 बजे मंगाओ। तो ये तो भाई हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल है, आयुर्वेद के हिसाब से तो 7 बजे के बाद खाना खाना नहीं चाहिए, और यहाँ खाने का टाइम ही उल्टा है, सोने का टाइम भी उल्टा है, सो रहे हैं लोग 2-2 बजे, उठ रहे हैं सुबह 10 बजे तक, तो कहाँ से ठीक रहेंगे लोग? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पहुँच से बाहर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये आप अपने आप में कर सकते हैं। अभी अपना खुद खाना बनाओ और खाओ भाई, बाजार से क्यों मंगाते हो आप? कोई

0: फास्ट फूड वाले आपके घर थोड़ी आते हैं देने के लिए, आप ऑर्डर कर दो तभी तो आता है ना खाना, तो अब मत करिए ना ऑर्डर, आप घर में बना बना खाना खाइए, आपकी वाइफ होगी या बेटी बेटा जो भी है आप खुद बनाओ कुछ भी करो, मतलब तो मत खाइए बाहर का, ये जरूरी थोड़ी बाहर का खाना खाना, ये तो अपने ऊपर बात है ना।
1: मतलब ये खुद ही अपनी डाइट का ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पौष्टिक है क्या नहीं है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं हाय गुड हॉट नून रिया फ्रॉम उत्तराखंड, ये लिखती है माय फेवरेट ड्रिंक इन दिस बर्निंग समर इज चन्ना सत्तू एंड शुगर केन जूस एंड वुड एप्पल। वॉक करके आती हूँ इवनिंग में तो बहुत हीट हो जाती है, तो कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बॉडी कूल डाउन हो जाए।
0: देखिए वॉक कितने फास्ट करते हैं आप भी डिपेंड करता है, स्लो करते हैं मीडियम साइज मीडियम करते हैं या तेज करते हैं, और आपकी एज क्या है, ठीक है आपकी हेल्थ कैसी है ओवरऑल, तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अब आपकी आप ये तो आप हमें एज बताए, इतनी एज है आप इतना वेट है तो बताएंगे किस तरीके से करिए आप, तो आप मीडियम रास्ता अपनाइए, ना बहुत तेज चलिए ना बहुत स्लो चलिए, मीडियम चलिए। खाने पीने में गर्मी के मौसम में तो आजकल नींबू बड़ा सूटेबल है, आप नींबू की स्किंजी पी सकते हैं, आप दही की लस्सी बना सकते हैं वो पी सकते हैं, सत्तू ले जो बता रहे हो आप सत्तू लीजिए बहुत अच्छा है ठंडा है वो भी है ज़्यादा, तो ये मतलब जो भी ठंडी चीज़ें लीजिए ठंडी जगह पर रहिए आप, ठीक है तेज़ धूप में बाहर मत जाइए, तो सुबह शाम अपना बाहर का काम करिए उस टाइम मत जाइए, अवॉइड करिए अपना, ये तो आपको देखना ना, ये हर आदमी की अपना इंडिविजुअल लाइफ, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि भाई ये पैरासीटामोल सबका बुखार उतर जाएगा, नहीं वो कहता हर आदमी की अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है कि इसको फॉलो करना पड़ता है, हर जो रूल्स है वो है ये कि सुबह उठ के आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठिए आप, अब कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं बताइए मेरे को, लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का ही पता नहीं किस टाइम होता है, फिर उठ के पानी नहीं पीते लोग, एक कप चाय पीते हैं तो यहीं से बीमारी शुरू हो जाती है, जबकि चाय तो पीनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो आप सुबह सुबह उठ के एक डेढ़ लीटर पानी पीना चाहिए, उसके बाद आपको दीर्घ शंका होगी, दीर्घ शंका होने के बाद फिर वापस बैठिए और फिर एक गिलास पानी कम से कम पीजिए, फिर आपको लघु शंका होगी, अब लोगों को दीर्घ शंका क्या होती है लघु शंका ये भी नहीं मालूम, और जब ये समझिए अगर आपको दीर्घ शंका होगी तो आपका पेट साफ हो गया, लघु शंका होगी तो आपका समझो खून साफ हो गया, किडनी काम कर रही सही, तो जब सारे सिस्टम काम करेंगे सिर्फ पॉजिटिव सोचिए आप पहले, और आपके जो दांत हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दांत से ही आपका सकारात्मक सोच, दांत से ही पेट साफ खून साफ स्वस्थ रहेंगे आप, सीधा फार्मूला है, इसको फॉलो करिए आपकी बीमारी आपके पास आएगी नहीं, कभी तो खाने पीने का तो कंट्रोल करना पड़ा, जीभ पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा आदमी ठीक रह नहीं सकता।
1: डॉक्टर साहब जैसे सर्दियों में होता है हमें ठंड लग गई तो नजला जुखाम खांसी ये सब हो जाता है, तो क्या लू लगने के भी कुछ लक्षण होते हैं कि हाँ लू लग गई या कुछ गर्मी?
0: हीट स्ट्रोक होता है मैडम, शरीर में से आग सी निकलती है, जैसे आप जैसे भट्टी के पास बैठे पहला यही तो है कि गर्मी निकलेगी शरीर में से आग सी निकलेगी, तो उसके लिए एकदम ठंड में जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तो हम कपड़ा गीला करके बॉडी पे लगा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं या आजकल एसी में रखो उनको, तो इस तरीके कर सकते हैं। तो
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मैं नीता अमरावती से, सर मेरे पति को लू बहुत लगती है, ऑफिस जाते टाइम एसी कार में जाते हैं, उनकी उम्र 55 है, आम का पन्ना और छाछ भी देती हूँ, ये सब करके भी लू क्यों लग जाती है, सिविल इंजीनियर है तो साइट पे जाना ही पड़ता है।
0: देखिए ऐसा है कि सिविल इंजीनियर साइट पे जाते हैं वो तो वहाँ धूप में खड़े होते हैं ना, ठीक है वो तो क्योंकि काम है उनका प्रोफेशन ऐसा, तो उनको बोलो भाई वाइट उनको लेना एक छतरी खरीद के लाओ सफ़ेद कपड़े वाली ऊपर वाली, ठीक है, और उनको बोलो एक सफ़ेद कोई कपड़ा रखें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा ना हो ठीक ठीक हालत में, उसको गीला करें बार बार और सिर पर रख लें, तो सिर को कवर रखें ऊपर छाता रखें तो हीट नहीं लगेगी। दूसरा कपड़े जो पहन रहे हैं वाइट कलर के कपड़े पहने, पूरी बाजू का कपड़ा पहने यानी हाफ बाजू का पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी को कवर रखें, ठीक है, और खाने पीने का तो आप अच्छा खिला रही हैं उनको अच्छी बात है ये तो आप दे रहे हो, पर उनको बोलो ये सत्तू वगैरह बना के उनको वहाँ भी दे दें ताकि वहाँ भी बीच में पिए वो, ठीक है ना, ये और ध्यान में रखें, और उनको बोलो पानी जब बार बार पानी पीना है आपको, ये प्रिकॉशन रखते हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी फिर।
1: तो डॉक्टर साहब कितना पानी पीना चाहिए और कितनी कितनी देर में लेना चाहिए?
0: देखिए पानी का तो ये है कि कितनी उसकी हाइट है कितना वेट है, आमतौर पर 3 लीटर पानी तो हमेशा पीना चाहिए
1: जनरल में अगर सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबके लिए।
0: और अगर उम्र कम है बच्चे को थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा मोटा आदमी है या ज़्यादा मेहनत करने वाला है जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो 3 लीटर तो है ही बच्चे, गर्मियों में 4 लीटर पानी भी आप इजीली पी सकते हैं, और आज के जैसे आपका जैसे लोग शराब वराब पीते हैं, मान लो कोई शराब पिएगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी शरीर की, जब गर्मी बढ़ेगी तो आपका लीवर भी ख़राब होगा, आपका ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है शराब ज़्यादा पीने से, आपका किडनी ख़राब हो जाएगी, तो एक ये है ना खाना पीना क्या है, अब आपका जौ का सत्तू बनाइए, आजकल लोग बियर पीते हैं पर बियर में भी नशा डाल दिया इन्होंने क्या कर दिया पता नहीं, तो बियर ठंडी रहती है वो आप दे सकते हैं वो पी सकते हैं,
1: जिसके बारे में हम और भी

बात करेंगे कि समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, लेकिन त्वचा की हम देखभाल कैसे करें, तो आप हमें बताइए कि गर्मियों में हम बाहर जाएं तो स्किन पर क्या लगाकर जाएं, क्या नहीं लगाकर जाएं त्वचा पर, जिससे कि हमारी कई बार स्किन बर्न हो जाती है या रेडिशनेस आ जाती है।
2: देखिए, मैं हम तो भी कोई भी क्रीम जो बाजार में अवेलेबल है वो स्किन पर लगानी नहीं चाहिए। कोई भी सबसे बेस्ट है आपको

0: का कोकोनट खरीदो, अपने सामने तेल निकलवाओ, उसका इस्तेमाल करो आप, और उसको उसको तेल की उसकी मालिश करो, मालिश करने के आधा घंटे बाद स्नान करो, उसके बाद में ये साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं इसको थोड़ा कम साबुन करो या अच्छी क्वालिटी का साबुन इस्तेमाल करो। आम जो साबुन बाज़ार में मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो स्किन को और ख़राब करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनो, आपको बॉडी कवर होनी चाहिए ताकि सन जो रेज हैं वो सीधे आपकी बॉडी पर ना पड़े। सबसे ज़रूरी ये है, अगर आपकी रेज सीधी नहीं पड़ेंगी तो बर्न, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जितनी भी क्रीमें बना रखी हैं वो तो बिजनेस का आइडिया है लोगों का, और लोग चाहते हैं को कुछ मिले करने के लिए, पर बाकी हमारे विचार से तो सब बेकार है। बाकी आप जैसे आपका आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग शेविंग करने के लिए बाजार से क्रीम खरीदते हैं, एलोवेरा का जेल निकालो उससे शेविंग करो, बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास एकदम, पैसा ही नहीं लगेगा, घर के घर काम हो जाएगा।
1: एलोवेरा का सेवन करेंगे और
0: उसी लगाएंगे बॉडी पे,
1: उसे बॉडी पे
0: पूरी बॉडी पे लगा सकते,
1: पूरी बॉडी पे लगाएंगे और पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे जिससे,
0: और लाइट कलर के कपड़े,
1: लाइट कलर के,
0: व्हाइट बेस्ट है।
1: ओके, और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं सोराज बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ा से, हरियाणा से जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: जी बताइए क्या प्रश्न है?
2: मेरा प्रश्न ये है जी कि मैं जो है जब सोच जाता हूँ ना, लैट्रिन काली आती है जी, उसका भी कभी उसमें मवाद आता है जी, और भूख कम लगती है जी।
0: भाई खाना क्या खाते हो आप? अगर आप
2: खाना तो मैं घर का ही खाता
0: हूँ। घर का तो खाते, अगर पालक खाओगे तो लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है ना? तो लैट्रिन काली के बहुत सारे कारण, अगर आयरन की कोई चीज़ें खाओ तो, या कोई गोली खा रहे हो तो भी लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है? और पेट प्रॉपर साफ होता नहीं होता ये अलग बात है। भूख आपको भूख अच्छी लग रही है, पेट साफ हो रहा है, सुबह कितना पानी पीते हो उठ के?
2: 2-3 गिलास पानी पीता हूँ डेली।
0: देखो कम डेली 2-3 गिलास तो बहुत ही कम पानी है महाराज, सुबह उठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीजिए बैठकर, पानी भी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटने खराब हो जाएंगे। अब पानी में आप, अब गर्मी का मौसम है नींबू डालकर पियो, अगर नींबू शूट करता है, ठीक है ना, आधा आधा लीटर करके दिन में 2-3 बार पहले सुबह सुबह खाली पेट, पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद फिर पानी पियो, फिर बार बार बाथरूम, खून भी साफ हो जाएगा, बीमारी आएगी नहीं ना कहीं भी। और बाजार का अगर कुछ खा रहे हो अड़ंग दड़ंग तो मत खाइए, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब एक मैसेज भी हमारे पास ये लिखते हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सत्तू चने का जो का बेस्ट होता है, तो प्लीज़ गाइड करिए कि और क्या क्या हम ले सकते हैं। यह है सतीश कुमार, एज है 66 साल, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
0: देखिए जो सत्तू आप ले रहे हो जौ का चने का, वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, सभी को लेना चाहिए। बाकी तो आप गर्मी के मौसम में जो गर्मी में फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां गर्मी में पैदा होती हैं, जैसे आपका खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये आप खाइए। जूस पीना तो आपका संतरे का जूस पीजिए आप, अनार का जूस पीजिए आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, नींबू आपका बहुत बेस्ट है, नींबू का पानी पीजिए, दही की शिकंजी बना के पीजिए आप, छाछ पीजिए, ये चीज़ें लीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा। और गर्म चीज़ें तली और चीज़ें अवॉइड करिए आप, और बाजार का खाना छोड़ दीजिए, बाजार में धूप में बाहर घूमना बंद कर दीजिए, ये रखिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से
1: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न ये है जी, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ, जैसे कि तरबूज भी खाओ इस मौसम में, लेकिन हमने जो न्यूज में देखा, तरबूज खाने से जैसे 2 जगह मौत हुई है।
0: देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, आप अगर किसान है और खेती करते, तरबूज अपना खुद उगाइए आप और उसको खाइए, तो कहीं कोई इंजेक्शन का चक्कर नहीं। कोई आजकल तो बड़ी हेरा फेरी हो रही है, क्या कहें, कौन इंजेक्शन लगा रहा है, वो आजकल बेल में इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ें मत खाइए आप, अगर ऐसे खाओगे तो भाई कुछ ये तो यहाँ पे क्या एक्चुअली में क्या है,
3: तो हमें ये कैसे पता चले ये इंजेक्शन का?
0: भैया ये बात, सवाल आपका बड़ा अच्छा है ये। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कंपनी है सपोज, एक मिनट, वो खुद अपनी चीज़ें उगा रही है, ठीक है, खुद उगाते, मान लो फसलें उगा रही है, वो तरबूज उगा रही है, तो मैं समझता हूँ वहाँ हेरा फेरी नहीं होगी। जो रेडियो पे जो बिकता है, यहाँ बदमाशी होती है, ये लोग बदमाशी करते हैं, और ये अब क्यों करते हैं ये तो आप समझ सकते हो, जो भी जैसे चल रहा है मामला, कोई जो एक अच्छा जो ठैया है ना, जहाँ पे लोग पता है कि कोई और अच्छी कंपनी का आपके एरिया में कोई होगा, मुझे नहीं मालूम, तो जो खुद उगाता है उससे आप लोगे तो मैं समझता हूँ ऐसी नौबत नहीं आएगी।
1: मतलब
0: बाकी तो ये होता है, अगर मान ली कोई पौधा मेडिसिन अगर

0: के बिल के पास बनती पैदा होती है, सांप के बिल के पास पैदा होती है, तो उसमें भी कई बार सांप जैसे जहर उगलता है या पड़ता है तो उसमें भी उसका असर आ जाता है उसके। ये तो बड़ा नाजुक मामला है इस चीज़ का, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ध्यान रखिए और कहाँ से ले रहे हो ये देखिए, आपको देखने का विषय है।
1: वही जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है कि आप खुद ही देख रेख के अपना सामान लें कि हम क्या खा रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमें देख रेख करनी चाहिए, तो लेकिन ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, बच्चों और बुज़ुर्गों को गर्मियों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए ये बात सही है कि बुजुर्ग और बच्चे, ये शरीर इनका जरा नाजुक होता है
1: जी
0: और इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा कमी होती है इनमें, और ये गर्मी को ज़्यादा, ना गर्मी को ज़्यादा सहन सकते हैं और ना सर्दी को ज़्यादा सहन सकते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे बेस्ट है कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो बुजुर्ग हो, वो धूप में ना जाएं बाहर, जाना पड़े तो सुबह शाम अपना काम करें, खेलना बच्चों को खेलना तो सुबह शाम खेलें, बुजुर्ग पार्क में जाते हैं तो सुबह जल्दी जाएं उठ के, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद में अपना उषा पान करने के बाद में फ्रेश होकर आप पार्क में जाओ, आप 3 बजे 3:30 बजे उठो, उसके बाद में 7-8 बजे घर में आ जाओ। ऐसे बच्चों को थोड़ा, बच्चे तो नहीं उठा सकते 3 बजे, पर कम से कम उनको 5 बजे 6 बजे उठा लो, 6 बजे उठा कर आधा 1 घंटा घुमा के बना ले आओ भैया। जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, अगर आप धूप में बच्चों को भेजोगे या बुजुर्ग किसी सामान के लिए भेजेगा, जाएगा बाजार में धूप में, तो फिर तो नेचुरल बड़ा मुश्किल है उनका बचना धूप से। तो इसलिए बहुत मजबूरी है जाने की, तो फिर अपने छाते का इस्तेमाल करो, फुल बाजू के कपड़े पहनो और कपड़े वाइट पहनो या बिल्कुल लाइट कलर के पहनो, ये सब प्रिकॉशन रखो तो बचाव रहेगा।
1: तो ऐसे मौसम में बच्चों को जैसे स्कूल भी जाना होता है, खेलने भी जाना होता है, उनको गर्मी ना लगे तो उनको क्या दें?
0: देखिए सरकार ने इन मौसम में 2 महीने छुट्टियां कर दी गवर्नमेंट, इसलिए स्कूल बच्चों के बंद हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस बात में बड़ी जागरूक है जो छुट्टियां दे रही है बच्चों को, पता है कि बच्चों को हीट गर्मी से नुकसान कर सकती है। बाकी बच्चे जो खेलते हैं वो ये तो सुबह सुबह के टाइम खेलें जल्दी, या फिर शाम को 6 बजे के बाद खेलें तो हम बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बच्चे तो क्या मेहनत का करेंगे, जैसे बुजुर्ग आदमी कई क्या होता है वो काम करने की हैबिट होती है उनकी, वो ताकत से भी ज़्यादा काम करते हैं, तो वो दिक्कत नुकसान कर जाता है उनको, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने मेहनत की होती है ना, तो उनके लिए लगता है हल्का है, पर वो होता है भारी, उनका शरीर इतना अलाउड नहीं करता।
1: तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए?
0: देखिए पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, सबसे बढ़िया है कि पूरी अच्छी डाइट लेनी चाहिए उनको, तो डाइट अच्छी लेंगे, डाइजेशन उनका ठीक होगा, उनका सोच सोच अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, तो अच्छा है। देखिए सबसे ज़रूरी है आपका सोच पॉजिटिव रखना, फिर आपका आहार, पहले आहार आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आहार खाना चाहिए, उसके बाद निद्रा, आपको पूरी निद्रा लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की जो नींद का है सिस्टम, तो उसको पूरा लेना चाहिए। ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है और कम सोना भी नुकसानदायक है, तो ये चीज़ें देंगे। फिर तीसरा है फिर आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपकी जो भाषा है, जो आप वर्ड बोल रहे हो वो ऐसे ना हो जो दूसरे को चुभते हों, मतलब कंट्रोल के वर्ड होने चाहिए, ऐसी बात ना बोलो जो दूसरे को बुरी लगे, तो उसमें भी कंट्रोल रखो, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। ये कंट्रोल आपके हर चीज़ पे कंट्रोल है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल कर रखी है बहुत चीज़ों पे कंट्रोल आपका, तो ये कंट्रोल ही रखना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये तीनों चीज़ें, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करोगे तो मैं समझता हूँ बीमारी आएगी नहीं, ये आयुर्वेद में इनको उपशतम बोला है।
1: और सर, अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उनको कैसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका कैसी देखरेख करनी चाहिए?
0: देखिए गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की बात जरूरत होती है, एक तो उनको डाइट, ज़्यादा डाइट की जरूरत होती है बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी, दूसरा वो महिलाएं काम भी ज़्यादा करती हैं तो उनको भी चाहिए को सुबह सुबह जल्दी वक्त से काम कर लें, गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएँ, और खाना पीना तला भुना ये गर्म चीज़ें, गर्म मसाले वगैरह ना खाएँ, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, मौसम के हिसाब से जैसे आपका दही की छाछ है या सत्तू, जैसे आपने बताया था सत्तू है, और आपका नींबू का पानी है, चावल है और जौ है, इनका सेवन करें, ये ठंडी चीज़ें सारी ये खानी चाहिए सभी को, गर्मी में तो जौ का सेवन बेस्ट है, चावल भी बेस्ट है।
1: जी हाँ, इस पर हम बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर प्रॉब्लम्स एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, आज की बात पे पहुंचना चाहता हूं कि मेरी एज 40 साल है, हाइट 5.7 है और वेट 80 प्लस है। जैसे ही सुबह हल्का गुनगुना पानी में अजवाइन और गुड़ डाल के पीता हूं, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वजन कम करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करूं?
1: देखिए, वजन कम करना चाहते हैं तो घिया और तोरी का सेवन करो, बाकी छोड़ दो, और खाना पीना कम करो और गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, ठीक है। मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय पीते हो, फीकी पियो या ग्रीन टी पियो, वजन घटेगा, ठीक है।
0: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माय नेम इज मुकेश, एज इज 79 इयर्स, आई एम टेकिंग पंचारिष्ट, कैन आई यूज दिस इन दिस हॉट समर डेज?
1: देखिए, अगर आप पंचारिष्ट पी रहे हैं गर्मियों सर्दियों में भी, और अभी आपको शूट कर रहा है, तो आप पी सकते हो। अगर पीने से कोई दिक्कत ज़्यादा होती, मात्रा घटा सकते हो, 4 चम्मच पी रहे हो 3 चम्मच कर दो, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बंद कर दो, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है हर एक का। यहाँ आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है कि भाई आप सबके लिए की फार्मूला लागू होता है, या मौसम के हिसाब से सब ऐसे कर सकते नहीं है। तो मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, खान पीने में भी चेंज होता है, और इंडिविजुअल के ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी को, बहुत से ऐसे लोग हैं दूध पसंद करते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है। वैसे आमतौर पर दूध सब पसंद करते हैं ना, पर दूध से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी हो रही है किसी को, तो अगर किसी को कोई चीज़ शूट नहीं करती तो सीधा फार्मूला उसको मत दीजिए आप, जो शूट करते हैं इससे लाभ होता लीजिए। और ये इस बारे में जो पेशेंट है वो ज़्यादा जान सकता है कि मुझे क्या शूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
0: डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि मौसम का असर हमारे स्वभाव पे भी पड़ता है। अच्छा मौसम होता है हम खुश होते हैं, अब जैसे गर्मी का मौसम होता है तो कई बार हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ है?
1: हाँ, देखिए, नेचुरल क्या है, जब हमारा शरीर खुश होता है, जैसे मन खुश होता है, तो तभी मन खुश होगा जब हम अच्छा फील कर रहे होंगे, गुड फीलिंग होगी। और जब हम गर्मी में परेशान होंगे या किसी भी वजह से परेशान होंगे तो फीलिंग कहाँ गुड़ रहती है, फिर तो फीलिंग गड़बड़ आ जाती है। तो इसलिए ना

0: स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो नेचुरल गुड फीलिंग होगी। और फिर हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं चीज़ों में गुड फीलिंग के लिए। ये नहीं खाली हम उधर तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उधर गुड फीलिंग कहाँ से आएगी भाई? गुड फीलिंग तब आएगी जब अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सब उसको सराहें कि अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई उसका कहेगा ये बेकार काम है तो कहाँ गुड फीलिंग आएगी? तो ये है कि सोच के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। और हमारा हेल्थ ठीक है तो हम अच्छी गुड फीलिंग कर सकते हैं, अच्छा सोचेंगे तो गुड फीलिंग रहेगी।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि जो लोग कामकाजी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कई बार होता है कि कईयों को ऑफिस में काम होता है, वो पूरा पूरा दिन एसी में रहते हैं। जब ऑफिस वर्क ओवर हुआ या लंच टाइम हुआ, वो एकदम सडनली एसी से बाहर निकलते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर फील्ड वर्क होता है, तो वो एकदम से गाड़ी में बैठे या ऑफिस में गए तो एकदम सडनली एसी में गए। तो ये जो सडन मौसम का चेंज होता है या एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जिसकी वजह से कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है?
0: उसके लिए एक भी, जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, अपन को बाहर जाना है, तो 10-15 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए ताकि बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ऐसे ही गाड़ी में से आप उतरना है आपको, तो पहले गाड़ी का एसी बंद कर दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ये तो है भी, ये तो है नहीं कि बाहर तो एसी नहीं लग रहा है, आस जगह पे बाहर तो एसी है नहीं, हमारी पृथ्वी पर बेस हर जगह एसी चल रहा है, ये तो ठंडा मुल्क तो है नहीं ये। तो ये है कि हमें ये अपने आप को सोचना है और अपने आप से करना है कि आप अगर जैसे गर्मी से आप एसी में जा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बॉडी धीरे धीरे कूल करेगी, पर जब आप कूल हो और एकदम बाहर जाओगे तो वहाँ हीटअप होती है बॉडी, तो वहाँ पहले ही एसी बंद हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल के करीब आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: और साथ में अगर हम देखें, जैसे गर्मियों में वर्कआउट करने के लिए भी कई बार मन करता है, कई बार नहीं करता है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ऐसे में योग और प्राणायाम गर्मियों में कितना लाभकारी है और कौन कौन से करने चाहिए जिससे हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें?
0: देखिए, प्राणायाम तो मैं समझता हूँ कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है। आप कम टाइम करिए उतना, जैसे आपको मान लीजिए आपकी प्राणायाम करने की ताकत आधा घंटे की है तो आप 15 मिनट कर लो बस, मतलब इतना ज़्यादा ना करो जिससे आपके बॉडी पर ओवरलोड पड़े। हल्का खाओगे तो एक्टिव रहोगे, भारी खाओगे तो सुस्त पड़ जाओगे। तो वो वाली बात है, प्राणायाम करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, योग करना है, वो लिमिट में करो। ये नहीं कि भाई आप वेस्टर्न डे मौसम में 1 घंटा कर रहे हो, गर्मी में 1 घंटा करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए टाइम रिड्यूस करो उसका, और इस तरीके से करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा बॉडी, अपनी इंडिविजुअल बॉडी एडजस्ट कर। टाइम क्या करने का ये भी डिपेंड करता है, अगर आप सुबह सुबह ठंडे मौसम में करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, गर्मी शाम को करेंगे तो शाम को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेचुरल वहाँ आप कम कर पाएंगे, तो वहाँ अगर ज़्यादा करेंगे दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए अपने आप को खुद एडजस्ट करना पड़ता है।
1: और अक्सर होता है कि हम एकदम ठंडा पानी भी पी लेते हैं, तो पानी किस टेम्परेचर का हमें पीना चाहिए? क्योंकि गर्मी लगती है, प्यास लग रही होती है, लगता है कि हाँ नॉर्मल पानी पियेंगे फिर प्यास नहीं बुझेगी।
0: देखिए ऐसा होता है, यही तो बात है कि भाई आप मटके का पानी पियो, मटके में पानी रखो उसको पियो, कुछ भी नहीं होगा आपको, ना गला खराब होगा, ना खांसी होगी, ना कुछ होगी। अब हम एसी का भागते हैं, अभी बाहर गर्मी में से आए और एसी का ठंडा पानी पियेंगे तो गर्म सर्द हो जाएगी, तो फिर आपको गला भी खराब, गला पकड़ा जाएगा और खांसी जुकाम भी हो सकता है आपको। इसलिए बेहतर है अगर मान लें मटका नहीं है गर्म एसी है तो पानी ठंडा गर्म में मिक्स कर लो फिर पी लो उसको, पर एकदम ठंडा मत पियो आप, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी एकदम ठंडा है तो आपको दिक्कत पड़ेगी।
1: सर, और एक ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। वो लिखते हैं कि बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरा प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में मुंह पर घुमौरियाँ हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए कि हमें मुँह पर घुमौरियाँ ना हों, इसके बारे में बताने का कष्ट करें।
0: देखिए ऐसा होता है, एक आपकी एज कितनी है हम ये जानना चाह रहे हैं।
1: उन्होंने लिखी है, उनकी एज जो है 25 वर्ष,
0: बस यंग एज है आपकी
1: जी।
0: तो ये
1: है जोगाराम बलोतरा राजस्थान से।
0: जोगाराम जी, गर्मियों में लोग आम खाते हैं और आम जो है वो कार्बाइड में पक रहा है, पता है आपको कार्बाइड में पकता है और कार्बाइड से कैंसर होता है, ठीक है, और आम की तासीर वैसे गर्म है, तो ये जो गर्म आम है और गर्म कार्बाइड का तो छोड़ दीजिए आप, वो तो पूरे देश में ऐसे चल रहा है इसलिए कैंसर भी फैल रहा है उससे, पर जो गर्मी है और आम खाने से ऐसी घुमरियाँ हो जाती हैं आमतौर पर यंग एज में, ये कॉमन है। इसका तरीका ये है कि आम को पहले आप पानी में भिगो, कम से कम 24 घंटे पानी में भिगा रहने दो, पानी चेंज करो उसका, और उसके बाद में उसको खा रहे हो तो दूध के साथ लो उसको, दूध आम और दूध मिक्स करके लो, या आम खाओ ऊपर से दूध पियो, तो फिर ये घुमरियाँ आपको नहीं होंगी। और बिल्कुल ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ फ्री में, अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं 6 घंटे की नींद लेके, तो 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे

0: अपना स्पूटम अपने चेहरे पर लगाओ, ऐसा करोगे तो 15 दिन में घुमरी आपकी सूखनी शुरू हो जाएंगी, तो ठीक हो जाएंगी बिना दवाई के।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
2: सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा कठौर जिला मेरठ से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: सर प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लाए हैं, डॉक्टर साहब को भी हमारा सलाम।
0: सलाम जी।
2: हाँ जी, हमारे जो बच्चा है करीब 6 साल का है, वो गर्मियों के दिनों में उसकी आंखों में बहुत खुजली हो जाती है, तो इसके लिए आपसे बस ये मालूम करना था।
0: देखिए, ठंडे पानी के छींटे मारिए आंखों पे उनको, आंखें बंद करा के ऊपर से मारिए ठंडे पानी छींटे, दिन में 3-4 बार आंखें धोइए और उसको कम से कम 2 बार उसको नहलाइए, और धूप में उसको जाने से बचाइए आप, और धूप का चश्मा अगर आप बच्चा लगा सकता है तो उसका इस्तेमाल करें।
2: अच्छा, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप ये रेडियो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी,
0: धन्यवाद।
2: जितने भी आप हमारे साथ ये सुन रहे हैं भाई, सभी को हम कहना चाहेंगे प्रोग्राम सुना करें और उस पर अमल करें, और हम भी सुबह उठ के पानी पीते हैं करीब 1-1.5 लीटर, और उसके बाद में सोच जाते हैं, साफ हो जाता है पेट, इसलिए बहुत अच्छा दिन भी अच्छा गुजरता है।
1: जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने आंखों का पूछा, तो एक बार संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की डाइट सभी को लेनी चाहिए?
0: देखिए, आयुर्वेद में तो जैसे वेदों में अपना है, जैसे अपना सनातन है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और आयुर्वेद में जो है वो स्वस्थ रहकर जीने का तरीका है। तो अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई आदमी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यहीं से शुरुआत होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर वृक्षपान करना, उसके बाद में फ्रेश होना, मंजन करना, ब्रश करना। अब ब्रश मंजन की बात है, मंजन की बजाय सबसे जो है बबूल और नीम की दातुन सबसे अच्छा है, पर लोग उनको भूल गए। आजकल पेस्ट लगा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उनसे कैंसर भी हो रहा है मुंह का, तो या फिर आयुर्वेदिक मंजन करिए। अब ये है, यहाँ पे जो मिलावट का चक्कर है सबसे बड़ा खतरनाक है। अब लोग मिलावट से बचते, कोई मिलावट के लिए तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी चीज में कुछ भी मिला सकता है, आपको कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही आपको, तो आप करेंगे क्या? तो ये कि आयुर्वेद में जो सिस्टम लिखा है उस तरीके से आप नहाना खाना पीना सब एक लिमिट में रखिए आप, तो उस चीज़ को अपनाएंगे आप तो मैं समझता हूँ बीमार होगी नहीं आप, ठीक है। उसमें वही है, हम पहले मानते हैं, हमने बताया पहले भी, सकारात्मक सोच रखो, उसके बाद में अपना दांत ठीक रखो, और जैसे दांत सही तो पेट सही, और पेट सही तो सेहत सही, सीधा फार्मूला है। फिर आपका पेट साफ होना चाहिए, फिर आपका खून भी साफ होना चाहिए, उसके लिए आपका दीर्घ संका पेट साफ से लघु संका खून साफ करते हैं, बार बार पेशाब आता है आपको तो साफ रहेगा। अब लोगों को कब्ज है, किसी को खाना उठपटांग, कितने मसाले उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो किडनी खराब कर रहे हैं, कहीं लीवर खराब कर रहे हैं, कहीं कितनी प्रॉब्लम, और गैस बनती है लोगों को, गैस बनकर गैस जहाँ भी जाती है वहीं अपनी बीमारी पैदा करती है, गॉल ब्लड स्टोन बन रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो सब गैस की मेहरबानी से हो रहे हैं। जहाँ गैस जाएगी अपना काम, गैस मतलब वायु, और ये गर्मियों में वायु बढ़ती है, वायु का वेग बढ़ता है, इसमें कफ का कम होता है, इन ताकत कम हो जाती है, और शरीर इस तरीके से वायु का वेग बढ़ता है। तो खाने पीने का सिस्टम ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब जी एवं शिल्पा जी और शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और विषय भी बहुत अच्छा है, आज आयुर्वेद पर जानकारी प्राप्त हुई। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाते जाते संक्षिप्त में बस इतना श्रोताओं के लिए एक मैसेज बता दीजिए कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए रोज क्या करें?
0: देखिए, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडी चीज़ों का खाना, धूप से बचना, गर्म मसाले वगैरह नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड खाएं आप, वो ठंडा हो सकता है, नॉन वेज हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। तो जितने आपके ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो के खाएं आप, सूखे ना खाएं, और सूखे गर्म होते हैं, भीगने के बाद में गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो आप खाएं उनको। पानी ज़्यादा पिएं, बार बार पानी पीते रहें, हर घंटे में 2 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना पानी पिएंगे, क्योंकि पानी हमारा बाथरूम से भी जा रहा है बाहर, खून साफ हो रहा है, पसीने से भी जा रहा है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, स्वस्थ वही जो मौसम के साथ संतुलन बनाकर चले और प्रकृति के नियमों को अपनाए। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन जीने की कला है। स्वस्थ जीवन की शुरुआत सही आदतों से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर बलजीत सिंह दबास, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैडम, आप मुझे बुला रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपना ज्ञान

0: लोगों को दूं और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो आप अपना काम भी सही करेंगे और अपना परिवार का काम भी, परिवार को भी सब संभालेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो देश की सेवा भी सही करेंगे।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, गर्मी की तपिश से बचाव का मंत्र है सही दिनचर्या और संतुलित आहार। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सजग रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार

ओके दोस्तों, फिर देव इजाजत आरजे जोरावर सिंह नू मिलदे आं जी एक नवी उम्मीद नवी एनर्जी दे नाल, भरपूर एनर्जी दे नाल। जिंदगी जिंदाबाद, लव यू जिंदगी। लो जी, स्टे ट्यून्ड ते गाना तुसी सुनदे रहो मजेदार। ठीक है जी, मिलदे आं जी तुहानू असी थोड़े ही ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਰ ਜੇ ਹਰੀਸ਼।

नमस्कार, पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। सर्वोच्च अदालत ने देश दियां सारियां उच्च अदालतां नूं अपने फैसले राखवें रखण दे 3 महीनियां दे अंदर उस नूं सुनाउण दे निर्देश दित्ते ने।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने हाजिर है हरीश लह के तुहाडा फेवरेट वाला प्रोग्राम। हाँ जी जनाब, ये सफर जिसका आगाज हो चुका है और हरीश नाल है तुहाडे और हर वार दी तरह उम्मीद है कि ये महफिल भी कमाल दी होएगी और ये महफिल दे विच तुहानू मज़ा मैं कहना चार गुणा आएगा और ये जड़ी एनर्जी जड़ी सवेर दी तुहाडी बनी हुई है एफएम रेनबो दे नाल ओ एनर्जी इसे तरह कायम रहनी चाहिए है और हरीश इस एनर्जी नू दुगुणा चार गुणा होर वधाउण दी कोशिश दे विच जुट गया और साडे इस महफिल दे विच अज दा पहला पड़ा फिल्मी दुनिया जिसका आगाज हो चुका है और फिल्मां दा साडी लाइफ दे विच बड़ा गूढ़ा नाता है और फिल्मां किया जाता है कि साडी रूह दी खुराक है और रूह की खुराक जड़ी है जदों सानू मिलती है तो फिर सानू सुकून मिलता। मतलब पेट की खुराक तो रोटी होंदी है भोजन होंदा है पर रूह की खुराक जड़ी है ना वह सानू धुर अंदर तक सुकून दे जांदी है। फिर भावें खाना मिले या ना मिले सुकून मिल जाए ना वो ही बड़ा होंदा है और फिल्मों के विच वो सारे रस मौजूद होंदे ने जो सानू जिंदगी नू खुशनुमा बनाउण दे लई और रूह नू खुश रखण दे लई पाए होंदे ने और खास करके वो गाने वो जिहड़े गाने शब्दां दे विच परोए होंदे है म्यूजिक दे नाल साडे कन्नां तक पहुँचदे है और उहनां दे विच साज़ वजदे है और साज़ां दे नाल जिहड़े परोए होंदे अल्फाज़ ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਬਟ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਬਖੇਰਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੈਕਟ

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले च हुई खामियां दी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनसंख्या सुरक्षा लई सरहदां नूं सुरक्षित करना ते गैर कानूनी प्रवास नूं रोकना महत्वपूर्ण है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के खेत्र च एक इतिहासक उपलब्धि हासिल करदिआं प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना तहत 40 लाख घरां दीआं छतां ते सोलर पैनल लगवाए। पंजाब दीआं 102 स्थानक इकाइयां लई होईआं चोणां वास्ते वोटां दी गिणती सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ जारी। केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र जलंधर वल्लों 26 मई तों 29 मई तक कपाह उत्पादक खेतरां च सर्वेखण ते किसान जागरूक

आज मेरे यार की शादी है, शादी की गल हुई है, तो शादियां की ही गल अज असी अपने अज दे प्रोग्राम दे विच पब्लिक मंच प्रोग्राम दे विच करनी है कि जिहड़े व्याह अजकल हुंदे ने खास करके सोशल मीडिया साइट्स दे जरिए बच्चे एक दूसरे नूं मिलदे ने या मैट्रीमोनियल दे जरिए व्याह करवाए जांदे ने या फॉरन मैरिजिज हुंदियां ने उहनां दे विच धोखा धड़ियां वेखण नूं मिलदियां ने। यही साडा अज दा मुद्दा है कि ओह धोखे धड़ियां क्यों हुंदियां ने और उहनां नूं रोकण दे लई की तरीके अपनाने चाहिए ने और तुसी उहनां बाबत की सोचदे हो, की तुहाडे आले दुआले कोई इदां

0: दर दर फटके मेरे यार, देखो इस आफत का मारा। ओ शादी करके फंस गया यार।
1: अच्छा खासा थकवारा, अच्छा खासा थकवारा। 1017 FM रेनबो ते तुसी इस वेले हरीश नाल जुड़े हुए हो और व्यावां दी चर्चा चल रही है। और जेकर चंगा हम सफर मिल जाए तो बंदा कहिंदा है कि वाह वाह वाह वाह वाह वाह, नहीं तो बंदा इहो ही कहिंदा है कि शादी करके फस गया यार, चंगा ही मैं कुआरा ही। और अज दा साडा जिहड़ा मुद्दा जी, विदेशां या फिर मैट्रीमोनियल दे जरिए जदों विआह शादियां होंदियां ने, उस तो बाद कईआं दे नाल धोखा धड़ियां हो जांदियां ने, उस धोखे धड़ी तो किवें बचिया जावे, इस मुद्दे बाबत गलबात करन दे लई साडे लिसनर साडे नाल जुड़ रहे ने। एक होर लिसनर जुड़े ने, गल करदे उहनां दे नाल। हैलो।
2: हैलो सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन गल कर रहे हो?
2: सर जी मैं बस अड्डा मानसा तो

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश दी सरहदां नूं सुरक्षित करना ते गैर कानूनी प्रवास नूं रोकना देश दी जनसंख्यकी दी राखी लई महत्वपूर्ण है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज कहा है कि किसानां नूं बीजां दी उपलब्धता यकीनी बनाउण लई 1,74,000 क्विंटल दा राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले च हुईयां खामियां दी जिम्मेवारी तय कीती जानी चाहीदी है। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक दी घटना बहुत ही मंदभागी है ते ए नहीं होनी चाहीदी। विशेष कार्ज बल ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल च गैर कानूनी कफ सिरप दे एक वड्डे रैकेट दा पर्दाफाश करदिआं 10 लोकां नूं हिरासत च लिया। पंजाब च स्थानक संस्थावां दीआं चोणां लई पाईआं वोटां दी गिणती च सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 मुलजमां नूं 5 पिस्तौलां ते 22 कारतूसां समेत गिरफ्तार करके गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल दा पर्दाफाश कीता। मौसम विभाग ने जून तों सितंबर तक दक्षण पछमी मानसून रुत दौरान देश भर च आम

है ये प्यार सजना डीडी एलजे दा ए फेमस लेटेस्ट वाला लेटेस्ट ही गाना हुंदा महाराज क्योंकि ये हमेशा लेटेस्ट रहिंदे ने गाने ए पुराने कदे हुंदे ही है नहीं। 107 एफएम रेनबो ते तुहाडे मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहे ने और उन्हां मैसेजेस नू मैं इस वेले तुहाडे तक पहुंचा के पूरा कर रहा जी। और इस वेले मेरे लिसनर्स साडे तक अपने मैसेजेस पहुंचा रहे ने। एक मैसेज पढ़ते हैं जी। हरीश भाई सर प्रेम नमस्कार हार्दिक अभिनंदन। कोई माने या ना माने सच कह गए लोग पुराने बुरे काम का बुरा नतीजा चाचा भतीजा फिल्म गायक मोहम्मद रफ़ी शैलेंद्र नाई वाला ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा अलका मिड्डा सर धन्यवाद। ये मैसेज साढ़े तक पहुँचा रहे ने जी तो इन्हों की फरमाइश असी जरूर पूरी करते हैं। थैंक यू ये मैसेज मेरे तक पहुँचाने दे लई। और होर भी बहुत सारे साढ़े लिसनर्स अज मैसेजेस साढ़े तक पहुँचा रहे हैं वैसे तो रोज़ ही बट धड़ा धड़ आ रहे हैं मैसेज तो असी फटाफट ये मैसेज की फरमाइश पूरी करते हैं।

0: के उस बदनाम का बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा अरे क्यों भाई चाचा।
1: बिल्कुल सही जी, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो करोगे उसका नतीजा तो उसे तरीके का मिलेगा। तुहानू दिल चाहता है प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो हरीश दे नाल और तुहाडे मैसेजेस दा सिलसिला जारी है। अबोहर से राम सहाय शर्मा, मनीष शर्मा, केशव शर्मा मैसेज भेज रहे ने। फिल्म इन्होंने लिख के भेजी जी विधाता सॉन्ग के बोल, ओ साथिया सारे सहारे टूट जाए। और चलो फिर ओ साथिया विधाता फिल्म दा ट्रैक असी प्ले करते हैं इन्होंने।

नमस्कार जी। फिल्म हमराज, गीत ना मुँह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, ये सुनना चाहते ने। जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, ये मैसेज इन्होंने साढ़े तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। अगला मैसेज पढ़ते हैं। माणयोग हरीश जी, प्यार सत्कार नाल सत श्री अकाल जी, तुहानू भी जी सत श्री अकाल। किसी भी गीत विच शामिल करो जी, धन्यवाद। पिंड ते डाकखाना निम्नाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। ये मैसेज तुसी मेरे तक पहुँचाया है जी, और होर भी बड़े सारे मैसेजिज मेरे तक पहुँच रहे ने। ते फिलहाल असी ये हमराज फिल्म का ट्रैक सुनते हैं जी। आ जाओ।

डेकास्ट्रा, रोजी डेकास्ट्रा, पॉल डेकास्ट्रा, विलिस डेकास्ट्रा, रिस्पेक्टेड होस्ट हरीश भाई, थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम विद लवली सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच जी। और होर भी मेरे लिसनर्स मेरे तक मैसेजेस पहुँचा रहे ने। फिलहाल ये ट्रैक सुनते हैं जी आप, जो मिंटू चंदेल जी की फरमाइश है, वादिया मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का ये ट्रैक जड़ा उन्हों की फरमाइश से आप प्ले कर रहे हैं जी। आ लो

दिल चाहता है प्रोग्राम थोड़े तक पहुंचा रहा है हरीश, और इस वेले थोड़ी फरमाइशा पूरियां हो रही ने। मैसेज पढ़ते हैं जी। अगला सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सनी, मनी, काका, बिट्टू, लाडी, मोहन मास्टर, जनक नगर, जलंधर तो कोई भी गीत कहें कि सुना दो। थैंक यू सो मच। अगला मैसेज पढ़ते हैं जी। गुड इवनिंग सर, प्लीज़ प्ले सॉन्ग ये इश्क है फ्रॉम जब वी मेट मूवी फ्रॉम हरप्रीत कौर एंड जसप्रीत विरदी फ्रॉम नियर पठानकोट बाईपास चौक जलंधर तो। इन्होंने मैसेज किया, थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए, तो थोड़ी फरमाइश पूरी होएगी जी। थैंक यू ये मैसेज तुसी भेजिया, तो आ लो थोड़ी फरमाइश तो श्रेया घोषाल की आवाज़ दे विच जब भी मेट ये इश्क है।

बशीर बद्र जो इस जहान छड़ के चले गए, हमेशा हमेशा दली बट पीछे छड़ गए अनेक आशार, सैकड़े शेर और अनगिनत नज़्मा। 15 फरवरी 1935 नूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या दे विच जन्मे बशीर बद्र, बाद विच भोपाल दे विच आके वसे और उर्दू साहित दे विच उन्होंने कई गज़लां लिखियां, किताबां, अशार, नज़्मां, गज़लां, बहुत कुछ लिखिया और इस दे लई उन्होंने वड्डे वड्डे सन्मानां दे नाल नवाजिया गया और बशीर बद्र डॉक्टर बशीर बद्र बने और अपनी जिंदगी दे विच नौजवानों दे नाल नौजवानों नूं अपना दीवाना बनाया उन्होंने और उन्होंने लई उन्होंने दिलों की धड़कन नूं समझदियां उन्होंने उतार चढ़ाव, प्यार, मुहब्बत, नफरत, गम, हर एहसास नूं फील करके नज़्मां लिखियां और उस नज़्मां नूं साढ़े तक पहुँचाया अपनी कलम की ताकत दे नाल। और इसे लई कदे कोई याद विच हुंदा है, कदे कोई किसे दी मुहब्बत दे विच हुंदा है, कदे कोई किसे दी तन्हाई दे विच हुंदा है, गम दे विच हुंदा है, तां उन्हां दे अल्फाज़ां नूं इस्तेमाल करदा है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कहां से आई है ये खुशबू, ये घर की खुशबू है, इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया है। महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है, खुदा किसी की मोहब्बत पे आज मुस्कुराया है।

परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब मां हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, बशीर बद्र की ये लाइंस गजब है ना।

कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर मेरे साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। परेशान हो तुम भी, परेशान हूं मैं भी, चलो मैं कदे में वही बात होगी। चलो मैं कदे में वही बात होगी, चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक तुम्हें मिलूंगा जहां रात होगी। जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, ना बादल घिरेंगे ना बरसात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। किसी मोड़ पर

चलो ना, चलो आज हम इजहार करते हैं, हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं। तस्वीर देखकर तुम्हारी हाले बेहाल करते हैं, मिल जाए फुर्सत तुम्हें भी दुनिया की उलझनों से तो याद कर लेना, हम हर पल तुम्हारे मैसेज का इंतजार करते हैं। कोई है जो आपका इंतजार करता होगा, कोई है जो आपके प्यार को कभी भुला नहीं पा रहा होगा, क्योंकि प्यार तो आपका है, वो आपके प्यार को आपको कैसे भुला दे भला, है ना।

एक प्यार का नगमा है, प्यार का नगमा जो हमारे दिल तक पहुंचता है और दिल से रूह तक को छू लेता है, और जब वो हमारी रूह को छूता है तो रीव हमारी रूह खिल उठती है ना। और ऐसे ही नगमे आप तक पहुंचाऊंगा मैं 107 FM रेनबो के हमारे इस प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है मैं। बने रहिए मेरे साथ 107 FM रेनबो पे, जहां मैं हूं और आपका साथ है। एक प्यार का नगमा है मैं, एक प्यार का नगमा।

सुनो, यूं चुप चुप से ना रहा करो। यूं वहम सा हो जाता है, कहीं खफा तो नहीं हो, कहीं उदास तो नहीं हो। तुम बोलते अच्छे लगते हो, तुम डांटते अच्छे लगते हो, कभी शरारत से कभी गुस्से से हंसती हुई अच्छी लगती हो। सुनो, चुप चुप सीना रहा करो, तुम बोलती हुई अच्छी लगती हो। कभी कभी मुझे प्यार से डांटती हुई अच्छी लगती हो।

प्रेम करते हुए लोग समंदर हो जाते हैं, बाहर से शांत और भीतर से गहरे। अगर कभी तुम्हें यह रहस्य जानना हो कि जब एक नदी मिलती है समंदर से, तब वहां बड़ी लहरें क्यों उठती हैं, तो जाकर गले मिलना अपने किसी प्रिय से। वह रहस्य कभी कहा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। सिर्फ महसूस किया जाता है।

प्यार असल में होता क्या है? कहा जाता है प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है, पर सच तो ये है कि प्यार सबसे मुश्किल समझ आने वाली चीज भी प्यार ही है। हर किसी के लिए प्यार अलग है, किसी के लिए प्यार देखभाल है, किसी के लिए प्यार कबूल कर लेना, और किसी के लिए खामोशी भी प्यार ही है। हम सब ने कभी न कभी किसी को पूरे दिल से प्यार जरूर किया होगा, चाहा होगा, कभी पाया, कभी खोया, कभी समझा और कभी खुद को ही सवालों में खो दिया होगा, और कभी ना समझकर भी खुद को समझा लिया होगा। पर क्या हमने कभी यह समझा कि प्यार असल में होता क्या है? क्या यह सिर्फ दो दिलों का मेल है या आत्मा का रिश्ता? क्या यह सिर्फ एक इजहार है या एक आजीवन इम्तिहान? कभी कभी प्यार आंसू भी होते हैं, नहीं है ना?

कभी कभी किसी को देखकर यूं लगता है कि बस यही है वो इंसान जिसके आगे सारी जिंदगी हम कुछ नहीं समझेंगे, सारी जिंदगी उसी के नाम कर देंगे। दिल एकदम से तेजी से धड़क उठता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और बिना कुछ सोचे समझे मन कहता है आई लव यू, पर धीरे धीरे ना जाने ये अट्रैक्शन, ये जुड़ाव प्यार में बदल पाता है या नहीं। प्यार तो प्यार है, प्यार तक पहुंचने का सफर बड़ा खतरनाक है, प्यार ऐसे ही नहीं होता, ये तो महज आकर्षण है साहब। प्यार तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे चांद को छूना आसान है क्या? नहीं ना।

एक रात मैं छत पे बैठा था, आसमान में चांद पूरा था, मगर पता नहीं क्यों उसे देखकर अचानक एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। फिर ख्याल आया, ये चांद भी कितना अजीब है ना, पूरी दुनिया इसे देखकर सुकून महसूस करती है, मगर इसका अपना कोई चांद नहीं जिसे ये देर रात तक देखकर मुस्कुरा सके, जिससे ये अपनी तन्हाई बांट सके। और तभी मुझे उसकी याद आई, वो भी शायद बिल्कुल चांद जैसी है, सबके बीच होकर भी अकेली। उसके पास लोग तो बहुत होंगे, मगर कोई ऐसा नहीं होगा जो उसे मेरी तरह महसूस करता हो, जो उसकी खामोशियों में भी उसका हाथ थाम सके, जो उसकी छोटी सी उदासी देखकर खुद टूट जाए। फिर अचानक एहसास हुआ, मेरे पास तो वो है, हर दुआ में, हर ख्याल में, हर रात में, रात की बेचैनी में, मगर उसके पास कोई मैं नहीं, मैं नहीं।

एक प्यार का नगमा है जिसनों इत्थे ख़त्म करन दा वेला आ गया और मैं भी जा रहा जी और इस वेले तो हाड़े